ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 6 बजे हैं, अब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में

0: सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम अब आप इंटरनेट के माध्यम से अपने एंड्रॉइड मोबाइल सेट पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर भी सुन सकते हैं। 6:05 और 20 सेकंड हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। राम नाम गुण गाइए, मुदित होए हनुमान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तुरंत कल्याण करना।

हे दीन बंधु दीनानाथ, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं, हमारे अंतर्यामी हैं, आप दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। आपकी शरण में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम।

आप और आपके नाम की महिमा अपरंपार है प्रभु। मात्र आपके नाम के सुमिरन से ही मन सुख से भर जाता है। ये सब आपकी परम कृपा से ही संभव है। आपकी इस परम कृपा के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु।

0: राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसे राम पहचान। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने अनूप जलोटा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, हरिओम शरण और साथियों के स्वर में भजन सुने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार।
1: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शहर छोड़कर गांव में वास किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत माता ग्रामवासिनी है। मैं अपनी पैतृक भूमि का कर्ज अदा करने की भावना से यहाँ आया हूँ। ग्रामवासियों के बीच काम करने का अलग ही आनंद है। वो कहते हैं कि साहित्य का काम जनता से जुड़ने पर आगे बढ़ता है। तभी तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। कवियों को नवीन काव्य चेतना से अनुप्राणित निश्चित दिशा प्रदान करने में द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना का शुभारंभ सन 1903 में किया था। भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जिस नवीन युग का आविर्भाव हुआ उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो कि संवत 1950 से लेकर संवत 1975 तक का समय माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में राष्ट्रीय

0: वीरता एवं देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। द्विवेदी जी की लेखनी में तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश, विद्रोह की भावना एवं भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर सुनाई देता है, जिसको न निज देश का निज जाति का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा जीवित मृतक समान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी समाज का सर्वांगीण उत्थान चाहते थे। द्विवेदी जी के चिंतन में व्यापक धार्मिक भावना देखने को मिलती है। द्विवेदी जी के नेतृत्व में जातिता एवं धर्म आडंबर के विरुद्ध अभियान चलाकर मानव धर्म को प्रोत्साहित किया गया। स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए जाने की बात सोचे जाने लगी। इस प्रकार परंपरागत धर्म का स्थान मानव प्रेम ने ले लिया। मानवतावाद के आदर्श के कारण शोषित, पीड़ित, दलित एवं दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट होने लगी। द्विवेदी जी का विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति मानव प्रेम से ही संभव है, और इस प्रकार ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में या विश्व प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। द्विवेदी जी द्वारा अवतारवाद का खंडन करते हुए रामायण नामक निबंध में राम को एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। उनके अनुसार वाल्मीकि का संदेश नर से नारायण का है, नारायण से नर का नहीं। समाज को आदर्श स्वरूप प्रदान कराने में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रामायण नामक निबंध में द्विवेदी जी ने राम सीता के दाम्पत्य प्रेम, पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन, भाई का भाई के लिए आत्म त्याग, पत्नी के प्रति पति की निष्ठा, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य आदि सामाजिक मूल्यों को प्रतिष्ठित कर वर्तमान समाज में हो रहे मूल्य संक्रमण को रोकने का सत प्रयास किया गया और उच्च आदर्श स्थापित करने की भरसक कोशिश की गई। हिंदी पत्रकारिता में द्विवेदी जी ने विषय वस्तु के साथ साथ भाव, भाषा एवं अभिव्यक्ति को नई दिशा प्रदान की थी। विषय वस्तु की दृष्टि से उन्होंने भारतीय नारी की शिक्षा, स्वाभिमान, अस्मिता आदि समस्याओं को पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को प्रकाशित कर रचनाकारों का ध्यान उर्मिला जैसी उपेक्षित नारी जाति के प्रति केंद्रित कराया। इसके बाद उपेक्षित नारियों से संबंधित साहित्य का सृजन अधिकाधिक होने लगा।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा से लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो पत्रिका साहित्य भारती। रात 10 बजे हम प्रसारित करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर हम प्रसारित करेंगे श्रीरामचरितमानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 7:45 आज हम आपको सुनवाएंगे श्री विनय कुमार की वार्ता। विषय रहेगा पशु खाद्य प्रबंधन। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी दृष्टि दोष कारण और उपचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर एचपी सिंह। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। आज के कलाकार ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा पूर्वाहन 11:00 बजे। आज ये कार्यक्रम संगीतकार एमएम करीम पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर। विषय रहेगा सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। दूसरा विषय रहेगा वृक्ष लगाएं जीवन पाएं। आज शनिवार है। आज दिन में 1:15 पर हमारी

ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी पनघट। इसमें चर्चा करेंगे, विषय रहेगा बरसात में रखें सावधानियां। इसी कार्यक्रम में एक वार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय रहेगा कृषि में महिलाओं का योगदान। क्रम रहेगा आपकी रसोई, दादी का बटुआ और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे चर्चा करेंगे, विषय रहेगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसी कार्यक्रम में सुश्री रिद्धि गोस्वामी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, भारत में सहकारिता आंदोलन।

रहेगी। भारत में सहकारिता आंदोलन का विकास और चुनौतियां, क्रम रहेगा आइए जाने इस सप्ताह और आज के हमसफर। ग्रामीणों कार्यक्रम में शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुनेंगे वार्ता बाजरे की उन्नत खेती। वार्ताकार होंगे श्री प्रेमपाल जादौन। क्रम रहेगा नई खोजें, मंडी भाव बताए जाएंगे और मौसम की जानकारी दी जाएगी। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में। वार्ता प्रसारित की जाएगी मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले रोग और उनका उपचार। क्रम रहेगा आज का प्रश्न ज्ञान सागर। कुछ सेहत टिप्स दी जाएंगी और फिल्मी गाने भी प्रसारित किए जाएंगे। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर राजीव जैन की वार्ता। विषय रहेगा ग्लोबल वार्मिंग के आसन्न खतरे। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश शाम 7:31 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित विश्वनाथ का ख्याल गायन। दिन में 12:00 कार्यक्रम होगा लोक मंजरी। इसमें आज नौटंकी प्रसारित की जाएगी। शीर्षक होगा भक्त सुदामा। आलेख लक्ष्मण सिंह खलीफा का होगा। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप लोकगीत सुन सकेंगे। सदाबहार फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम में सुबह 8:45 पर और सुरसरिता कार्यक्रम में 10:00। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और साथी, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री विनय कुमार की वार्ता, विषय है पशु खाद्य प्रबंधन।
1: किसान भाइयों, पशुधन से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें तंदुरुस्त रखा जाए। तंदुरुस्त रखने के लिए ये जरूरी है कि पशुधन की अच्छी तरह से खिलाई पिलाई की जाए। पशुधन की अच्छी तरह खिलाई पिलाई करने से मतलब है कि पशु को संतुलित आहार दिया जाए। संतुलित आहार का मतलब है कि पशु को 24 घंटे में दिए जाने वाले चारे दाने में उसकी आवश्यकता के सभी भोजन तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में हों, अर्थात किसी भी भोजन तत्व की अधिकता या कमी न हो। पशु को जिन भोजन तत्वों की जरूरत होती है वे प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन और

पानी है। इनमें से पशु की खिलाई करते समय प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन व पानी की पूर्ति करने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तत्व दुग्ध उत्पादन में विशेष महत्व रखते हैं और इनकी पूर्ति पशु को साधारण तौर पर दिए जाने वाले चारों से नहीं हो पाती है, अतः इनके लिए अलग से प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ जाती है। वसा और शर्करा की पूर्ति पशु को साधारण रूप से जो चारा दिया जाता है उसी से पूरी हो जाती है। अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है कि प्रोटीन की पूर्ति के लिए पशु को अच्छे किस्म का हरा चारा और दाने का मिश्रण दिया जाए। अच्छे किस्म के हरे चारों में दो दाल वाली फसल के चारे जैसे बरसीम, लोबिया, रिजका आते हैं, जो स्वादिष्ट होने के अलावा प्रोटीन भी पशु की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। यदि इन्हें पशु को भरपेट दिया जाए तो पशु को रातव देने की बहुत ही थोड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक पता लगाया जा चुका है कि यदि किसी दुधारू गाय भैंस को भरपेट बरसीम खिलाकर ही 6 किलोग्राम दूध लिया जा सकता है, अर्थात पशु से इतना दूध लेने के लिए अलग से रातव देने की कोई जरूरत नहीं होती। यदि पशु को बरसीम जैसे अच्छी किस्म के चारे उपलब्ध नहीं है तो मक्का, जई, चरी, बाजरा आदि चारे दिए जा सकते हैं, लेकिन इन चारों को खिलाने के साथ ही साथ पशु को दाने का मिश्रण अवश्य खिलाना चाहिए, नहीं तो पशु से दुग्ध उत्पादन कम मिलेगा। रातम में पशु को घर में मिलने वाले पदार्थ जैसे जौ, गेहूं, जई, चना, बाजरा, मक्का, गेहूं की भूसी, चोकर, दालों की चूनी आदि को ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सरसों या मूंगफली की खली को बाजार से खरीदकर या घर की सरसों की पराई के बाद प्राप्त खली का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर किसान भाई रातम में जौ तथा सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं। यदि इनके साथ भूसी या चोकर या दालों की चुनी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए तो पशु से अधिक दूध प्राप्त करने में और आसानी हो जाती है। रातम बनाते समय ध्यान रखें कि 1 किलो रातम में लगभग 500 ग्राम जौ दले हुए, 350 ग्राम सरसों या मूंगफली की खली और 150 ग्राम गेहूं की भूसी या चोकर या दालों की चुनी मिलाई जाए। जौ की जगह गेहूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे जौ ज़्यादा अच्छा रहता है। साधारण पशुओं की खनिज लवण व विटामिन की जरूरत उन्हें दिए जाने वाले चारे दानों से पूरी हो जाती है। विटामिन की पूर्ति के लिए जब पशु को हरे चारे पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हों तो अलग से बाजार से खरीद कर देने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि हरे चारे नहीं खिलाए जा रहे हैं तो पशु को प्रतिदिन 5 से 10 ग्राम विटामिन पूरक शेवी मिक्स या बीटा वेलेंट देने की निहायत आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से पशु को रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है और उसका दुग्ध उत्पादन भी घट जाता है, क्योंकि विटामिन ए की काफ़ी मात्रा दूध में जाती है, अर्थात पशु को दूध बनाने में आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन बी पशु खुद ही सूखे चारे जैसे भूसा से अपने शरीर में बना लेता है और विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन विटामिन ए और सी की पूर्ति के लिए पशु को हरा चारा मिलना बहुत जरूरी है। दुधारू पशु से अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए जरूरी है कि उसे खनिज लवण मिश्रण अलग से बाजार से खरीद कर रोजाना खिलाया जाए। खनिज लवणों में मुख्य रूप से कैल्शियम व फास्फोरस पशु के दूध में रोज काफ़ी मात्रा में निकल जाता है, अर्थात दूध बनाने के लिए इनकी काफ़ी आवश्यकता होती है। इनकी कमी से पशु को दुग्धजर यानी परसून की बीमारी हो जाती है, अतः पशु को नित्य खनिज लवण मिश्रण जो बाजार में कई नामों से मिल रहे हैं इनमें से कोई भी एक रातव के साथ 50 ग्राम प्रतिदिन अवश्य खिलाएं। इसके अलावा पशु को दुग्ध उत्पादन

0: के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि दूध में 80% पानी ही होता है। पशु को प्रतिदिन 35 से 40 किलोग्राम पानी अवश्य पिलाना चाहिए। पानी जाड़े व बरसात के दिनों में कम से कम 2 बार और गर्मियों में 3 बार अवश्य पिलाएं। बढ़िया तो यह है कि पशु के पास पानी की नाद भरी रखें, जिससे जब उसे ज़रूरत हो तब पानी पी सके। लेकिन कैसे भी दूध दुहने से आधा घंटे पहले पशु को पानी पिलाने की व्यवस्था अवश्य करें। उदाहरण के तौर पर अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए एक लगभग 500 किलो वजन वाली गाय या भैंस जो 10 किलोग्राम दूध प्रतिदिन दे रही है को कम से कम 5 किलो गेहूं या जौ का भूसा, 25 से 30 किलोग्राम बरसीम या जई या लोबिया आदि का चारा और 5 किलोग्राम रातव और 500 ग्राम खनिज लवण मिश्रण अवश्य देना चाहिए। 5 किलोग्राम रातव में से 4 किलोग्राम रातव दूध के लिए और 1 किलोग्राम रातव पशु की सेहत के लिए देना पड़ता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री विनय कुमार की वार्ता। विषय था पशु खाद्य प्रबंधन। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:55 हुए हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। 80+400 कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः सञ्चालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति। एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति, यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000+ कोटि रूप्यकाणां विकासपरियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटनम् आधारशिलाञ्च स्थापयिष्यति। श्रीमोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः 45 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रदास्यति। अनन्तरं सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति। पाकिस्तान देशात् सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रियारूपेण सिन्धु जलसन्धिः स्थगितः अस्ति। गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिन्धु जलसन्धि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति। सः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीयरूपेण अपरिवर्तनीयरूपेण च त्यक्तव्यम्। तीस्तानद्याः समग्रप्रबन्धन पुनर्स्थापनपरियोजनायाः विषये श्रीजायसवालः बांग्लादेशस्य विकाससाहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ। श्रीशाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं, सम्भावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति। अद्यावधि सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजधान्याम् 1,02,000 गणना प्रपत्राणि अंगीकृतानि। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य अनुसारं दिल्ल्याम्

0: मतदात्री सूच्यां विशेष गहन पुनरीक्षणस्यांश रूपेण प्रायः 14,000 33 लक्ष प्रपत्राणि अधुना यावत् वितरितानि सन्ति। सम्प्रति दिल्ल्यां मतदात्री गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। अन्तिम मतदात्री सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रसारयिष्यते। पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया 20-प्रति-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् 5 स्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य 7 दिनांके नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे 20-प्रति-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः, यत् जुलाई मासस्य 11 दिनांके समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ 3 स्पर्धानां एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र

0: भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्वकप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. The Prime Minister will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pach Padra in Balotra. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Ministry and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. The India Meteorological Department or IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Gujarat Anti-Terrorist Squad has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed

0: to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. The claims circulating in social media that E20 fuel, which is a blend of 20% ethanol and 80% petrol, causes a drop in vehicle mileage are misleading. According to extensive field trials led by the Automotive Research Association of India in collaboration with Indian Oil Corporation Limited, Indian Institute of Petroleum Dehradun and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and her French counterpart Ronald Lesquer co-chaired the India-France Economic and Financial Dialogue in Aix-en-Provence City yesterday. Both the ministers recognized the value of the French Development Agency's work in India for economic development and welcomed the prospects for future projects. In the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in a thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर एचपी सिंह की वार्ता। विषय है दृष्टि दोष कारण और उपचार।
2: आमतौर पे एक बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है अभिभावकों द्वारा कि क्या हम चश्मा पहनाएं तो बच्चे की आंख का नंबर रुक जाएगा या आगे चलकर चश्मा उतर जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि चश्मा लगाने से आंख का नंबर न तो रुक सकता है और न आगे चलकर चश्मा उतर सकता है चश्मा लगाने से, क्योंकि उसके आंख के आकार पर निर्भर करता है कि जब आकार जैसा होगा जितना पावर होगा उसी हिसाब से। चश्मा मात्र एक उपकरण है जो कि आंख को साफ दिखाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आंख के पावर को रोकने की क्षमता नहीं रखता। मायोपिया के केसेस में जिन बच्चों का पावर बढ़ रहा होता है उनमें एकमात्र इलाज अगर चश्मे के अलावा उसका विकल्प है तो या तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद में जब नंबर रुक जाए उसके पश्चात तो उसका ऑपरेशन करा लें, पर चश्मा लगाने से चश्मा नहीं हट सकता। दूसरा प्रश्न जो अक्सर अभिभावक पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा चश्मा लगा रहा है लेकिन इसके बाद भी इसका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है कि चश्मा लगाने से नंबर रुक नहीं सकता, न उतर सकता। चश्मा लगा दिया जाता है और बार बार चेक इसीलिए कराना जरूरी होता है कि जब नंबर बदल जाए तो उसको हम बदल करके जो नया नंबर हो वो दे दें जिससे कि आंख पूरा काम करती रहे। अगर आंख काम पूरा नहीं करेगी तो आंख काम करना सीखेगी नहीं। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें के बच्चे को किसी एक आंख से या दोनों आंखों से कम दिख रहा होता है। बचपन में किसी कारण से यदि एक आंख से बच्चे को कम दिखाई देने लगे, जैसे कि आंख में कोई तकलीफ हो जाए और हम उसकी आंख पर पट्टी बांधे, एक हफ्ते के लिए भी पट्टी बांधने या दो हफ्ते के लिए पट्टी बांधने, तो यह संभव है कि उस आंख का विकास वहीं रुक जाए और जो स्वस्थ आंख है वो काम करती रहे, आगे आगे काम करती रहे और बच्चे को इस बात का आभास भी ना हो कि उसकी एक आंख काम नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जिन्हें कि ये पता नहीं होता कि उनकी एक आंख से उन्हें नहीं दिख रहा होता। ये इतनी आम बात है कि व्यक्ति जब नौकरी के लिए जाता है 18 वर्ष की आयु में, वहाँ मेडिकल चेकअप होता है उसका और वहाँ उसको बताया जाता है कि उसकी एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा और वो इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता कि उसे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। वो आंख उसकी बचपन से ही कमजोर हो चुकी होती है। अगर इसका पता जल्दी लग जाए तो इसका उपचार संभव है। इसीलिए जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उससे पहले उसका चेकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा स्वयं बता नहीं सकता कि उसे क्या तकलीफ हो रही है। और अगर उस उम्र पर पता लग जाए कि इसको ये समस्या हो रही है तो चश्मे के द्वारा या किसी भी और तरीके से उसको हम रोशनी को उसकी को कायम रख सकते हैं। पर 18 वर्ष की आयु में उसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष की आयु तक आंख का पूर्ण विकास हो चुका होता है और एक आंख जो बचपन से ही देखना नहीं सीख पाई है उसको सिखाना उस उम्र पर जाकर संभव नहीं हो पाता। तो एक तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिभावकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि बच्चे को भेंगापन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये संभव है कि उसका भेंगापन सिर्फ चश्मा लगाने से ही ठीक हो जाए, किसी ऑपरेशन वगैरह की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ देना इस भ्रम में रहना कि आगे चल के ठीक हो जाएगा तो

0: ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और आगे हमेशा के लिए उसकी रोशनी को कम कर सकता है। भेंगापन कभी भी इग्नोर न करें, उस पर हमेशा ध्यान दें और उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। भेंगापन इस बात का लक्षण है कि आंख में कोई ना कोई समस्या आ रही है, ये अलार्म है इस बात का कि कोई समस्या आ रही है और तुरंत इसकी जाँच की जरूरत है। अपने आप से भेंगापन ठीक अधिकांशतः नहीं होता है। अगर चश्मे से ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाएगा, लेकिन समय रहते उसका उपचार बहुत जरूरी है। एक बहुत आम सवाल पूछा जाता है कि अगर हम बच्चे को गाजर का जूस पिलाएं या अच्छा खाना खिलाएं तो इसका चश्मा उतर जाएगा या नहीं, तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि कुपोषण के वजह से यदि कोई कमी आई है तो वो तो गाजर खिलाने से या और अच्छा भोजन देने से ठीक हो सकती है, पर जो आकार आँख का बन गया है तो बाकी शरीर के आकार की तरह यह भी इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो गाजर का जूस पीने से चश्मा नहीं उतर सकता, ये अच्छी बात है, अच्छा भोजन लें शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन चश्मा उतारने में उसका कोई महत्व नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि माता या पिता में से किसी एक की आंखें कमजोर हों, चश्मा लगाते हों या दोनों चश्मा लगाते हों, तो बच्चे की नियमित जांच अवश्य कराते रहें, क्योंकि इस बात की पूरी पूरी संभावना होती है कि बच्चे या बच्चों में से किसी एक की आंखें कमजोर हो सकती हैं और उसको किसी भी तरह नकारें नहीं, जरूर चेक कराते रहें।
1: दृष्टि दोष कारण और उपचार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप ये लघु वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर एचपी सिंह। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं समवेश्वर में देशभक्ति परक रचना।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समवेश्वर में देशभक्ति परक गीत। 7:18 होने को हैं। इस देशगान के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेश व्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से रितेश।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
4: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा

0: फॉरवर्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए आम की सभी किस्मों की जीआई टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों के एआई कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपीटीईटी परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
2: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
1: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्साधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा

0: और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।
4: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 7:31 और 40 सेकेंड हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत दिनों से हम सब इंतजार कर रहे थे कि आगरा में बारिश कब होगी। हालांकि पिछले 1-2 दिन पहले थोड़ी थोड़ी सी, छितरी छितरी सी कहीं कहीं बारिश हुई थी, लेकिन जिस तरह की एक उम्मीद थी, प्रतीक्षा थी, उस तरह की बारिश अगर हुई है तो वो कल रात को ही है। हालांकि शाम से ही मौसम ऐसा हो गया था कि अब बारिश होगी और रात को बहुत तेज बारिश, ये लगभग पूरे आगरा शहर को इसने भिगो दिया है और जगह जगह अब देखने को मिल रहा है कि जल भराव भी हो गया है। कई लोगों से तो बात हुई, तो सुबह जब स्टूडियो आए तो लोगों से मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई, तो कहने लगे कि बहुत तेज बारिश हुई है और बहुत परेशानी हुई है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि बारिश नहीं हो रही थी तो भी परेशानी थी, हम गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे, और अब बस सिर्फ रात में 3-4 घंटे बारिश हुई है, बहुत ज्यादा नहीं। तो हम सुबह जब उठे तो लोगों को फिर कहते सुना कि बहुत तेज बारिश हो रही है और बड़ी परेशानी हो रही है। भाई कमाल की बात है, अगर बारिश हो तो परेशानी, गर्मी हो तो परेशानी, सर्दी हो

तो परेशानी। अब इस परेशानी का तो कोई हल है नहीं, ये तो मौसम है और मौसम के अनुसार तो भाई ये सारे काम होंगे ही। सर्दियों के मौसम में सर्दी होगी, गर्मियों के मौसम में धूप भी पड़ेगी, गर्मी भी होगी, और जब बरसात का मौसम है और मॉनसून आ गया है, इस मॉनसून की हमें बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा थी। ये 27 जून को आने वाला था लेकिन आज 4 जुलाई हो गई है, तो थोड़ा सा लेट है लेकिन इंतज़ार था। और इसका सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार था वो था किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, उनके खेतों में जुताई के लिए जैसे पानी लगाना होता है, खेत में परिवर्त करनी होती है, तो अब उनको वो नहीं करनी होगी। कहीं कहीं धान की पौध लगाई जा रही है तो वहाँ पानी की आवश्यकता होती है, उनको

4 जुलाई हो गई है, तो थोड़ा सा लेट है, लेकिन इंतजार था। और इसका सबसे ज्यादा जो इंतजार था वो था किसान भाइयों के लिए। जी हां, उनके खेतों में जुताई के लिए जैसे पानी लगाना होता है, खेत में परिवर्त करनी होती है, तो अब उनको वो नहीं करनी होगी। कहीं कहीं धान की पौध लगाई जा रही है तो वहाँ पानी की आवश्यकता होती है। उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि बारिश हो, बारिश हो, और अब बारिश हो गई है। ठीक है, हम लोग शहर में रहते हैं, हो सकता है ज़रूरत हमको कम रहती हो, हम सिर्फ गर्मी से परेशान रहते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा मौसम में बदलाव चाहिए, लेकिन बारिश की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कृषि प्रधान देश है और बहुत जगहों पर जो हमारी खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है, वो बारिश पर ही आधारित होती है। कहीं कहीं तो आप देखते हैं कि बहुत पानी मिलता ही नहीं है, नहरें नदियां वहाँ नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, तो बारिश ही उनका आधार है और तभी फसल होती है। तो बारिश होना बहुत अच्छी बात है, और जिस तरह का मौसम हो उस मौसम में अगर वही काम ना हो तो फिर कैसा मौसम। बस यह है कि जब भी जैसा मौसम हो हमें उसके अनुसार थोड़ी सी सावधानियां रख लेनी चाहिए, थोड़े इंतजाम कर लेने चाहिए, थोड़े एहतियात बरत लेने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए जल भराव की समस्या है, तो अपने घर के आसपास कहीं गड्ढे हैं तो आप उनको भर दीजिए। और ये हम सभी जानते हैं कि जब बारिश होती है तो छतों पर भी पानी गिरता ही है, तो जो छत के पनाले हैं, नालियाँ हैं, जालियां लगी हुई हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि जो आंधी तूफान आते हैं बहुत सारा कूड़ा करकट उड़कर आ जाता है, छत पर गिर जाता है, और वो धीरे धीरे नालियों पर जाकर लग जाता है। तो छत पर जाकर आप देख लीजिए कि कहीं कोई कूड़ा करकट आपके छत की नाली में तो नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो फिर छत पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस थोड़ी सी सावधानियाँ रख लीजिए और बारिश का आनंद लीजिए, क्योंकि बारिश की हम सबको ज़रूरत होती है, पानी की हम सबको ज़रूरत होती है। और जल संकट को अगर दूर करने में कोई बहुत बड़ी मदद हो सकती है तो ये बारिश से ही हो सकती है। बस शर्त यह है कि हम पानी के संकट को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं से हम बारिश के पानी को संरक्षित कर लें, उसको भर कर रख लें, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बना लें कि ये पानी ज़मीन के अंदर चला जाए। होता क्या है कि बारिश का जो पानी होता है वो शहर में पक्की नालियां हैं, सड़कें पक्की हैं, कच्ची ज़मीन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ज़मीन के अंदर पानी बहुत कम जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कुछ ऐसे साधन अपनाने चाहिए कि जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाए और हमारी ज़मीन के भीतर जो जल का स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। इससे जो पीने का पानी है उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा और पानी की आपूर्ति तो अच्छी हो ही जाएगी। अब यूं कहें कि बारिश हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का जो गुण है, ये स्वभाव है उसका कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसे कहीं ना कहीं परेशानी होती ही है। और परेशानी का समाधान ये कहें कि क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। अगर हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, इलाज करते हैं। तो इसी तरह से हर समस्या का समाधान भी होता है। तो जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई बात हो तो उसका समाधान ढूंढिए। आप उसका रोना मत रोइए कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, मॉनसून आ चुका है, ना चारों तरफ अगर आप बाहर निकलकर देखेंगे तो घटाएं घिर रही हैं, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी पुरवाई हवा भी चल रही है। और ऐसे मौसम में सच मानिए खाने पीने का भी एक अलग आनंद होता है। तो मौसम के अनुसार जब हमारा खान पान होता है उसका भी भरपूर हमें लाभ उठाना चाहिए। अब ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, बस ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। यात्रा पर अगर कहीं जाना है तो बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, अन्यथा यात्रा को आप टाल सकते हैं। और अगर यात्रा पर निकल ही गए हैं, बारिश आ गई है, तो दो पहिया वाहन वाले जो हमारे यात्री हैं या कहीं आते जाते हैं, ख़ासतौर से उनके लिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि तेज़ बारिश में किसी वृक्ष के नीचे न खड़े हों। और

किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां अच्छी तरह से छत हो, मजबूत छत हो, कोई जर्जर स्थान ना हो, ऐसा कोई महसूस ना हो कि छत गिर सकती है या दीवार गिर सकती है, वहां पर आप खड़े मत होइए। और बिजली गिरने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए हमने कहा है कि पेड़ के नीचे भी आप खड़े मत होइए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर बारिश हो रही है, आपको लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो थोड़ी देर के लिए उस काम को टाल दीजिए और घर पर ही रहिए। और आसपास देख लीजिए कि कहीं गड्ढे वगैरह तो नहीं है, जल भराव होगा तो जाहिर सी बात है मच्छर पनपेंगे, फिर मच्छरों से भी परेशानी होगी, और बरसात के दिनों में तमाम संचारी रोग होते ही हैं, त्वचा संबंधी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। तो बस साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि मौसम के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप ढल जाएंगे, और जब ढल जाते हैं तो आप यकीन कीजिए मौसम चाहे कोई भी हो, अगर गर्मी का मौसम भी है ना, धूप बहुत तेज पड़ रही है, और अगर आपने अपने आप को ढाल लिया है तो आपको धूप में जाने में भी आनंद आएगा। बारिश अगर हो रही है और आपने बारिश के अनुसार अपने शरीर को ढाल लिया थोड़े दिन में, तो आपको भीगने में भी बहुत आनंद आएगा। बरसात का आनंद लीजिए, अब मानसून आ चुका है, आपके लिए ही है ये।

0: जी हाँ, बारिश शुरू हो चुकी है, मॉनसून आ चुका है और अब तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में ये बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। तो आप बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन आनंद के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास, अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर सूचनाएं खास आपके लिए।
1: खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा पर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती एफएम के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के साथ।
1: आज की के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ,
1: आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 24 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी

0: का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां।
1: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 की तीसरी भाषा यानी R3 के मूल्यांकन के मानक निर्धारित कर दिए हैं। विद्यार्थियों को तीसरी भाषा में लिखने पढ़ने के बजाय बोलने और सुनने में अधिक अंक मिलेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत भाषा को पढ़ने और लिखने के बजाय सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। सभी संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों को नए मूल्यांकन ढांचे को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरी भाषा के लिए अध्ययन सामग्री NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड ने ओरल फर्स्ट पेडागोजी को अपनाते हुए 100 अंकों के स्कूल आधारित मूल्यांकन में 40 अंक लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए निर्धारित किए हैं। रीडिंग के लिए 20, रचनात्मक लेखन के लिए 15, पाठ्यपुस्तक आधारित लेखन के लिए 10 और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 15 अंक निर्धारित किए हैं। यह पाठ्यक्रम NCERT द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों में भाषा को सुनकर समझने और बोलने का आत्मविश्वास विकसित करना है। सुनने और बोलने का मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न कक्षा गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षकों को 8 गतिविधियों का मूल्यांकन करना होगा, जिसमें समूह चर्चा, रोल प्ले, वाद विवाद और अन्य मौखिक गतिविधियां शामिल होंगी। रीडिंग स्किल के लिए 20 अंक और रचनात्मक लेखन के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 8 जनपदों में 50 बिस्तरों के नए आयुष अस्पताल बनाने का फैसला किया है। इन अस्पतालों में एक छत के नीचे ही आयुर्वेद होम्योपैथी क्लिनिक होंगे। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पंचकर्म, क्षार सूत्र, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी होंगी। परियोजना पर पहले चरण का कार्य होगा। आयुष की शासी निकाय ने गत दिनों सीतापुर, चित्रकूट, एटा, अम्बेडकर नगर, औरैया, गाजीपुर, बाराबंकी और बिजनौर जिलों में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और स्टोर्स विभाग में जूनियर इंजीनियर के 4000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रोजगार अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दे दी है। पे लेवल 6 के ये पद 35 विभिन्न श्रेणियों में हैं। सबसे अधिक 845 पद जूनियर इंजीनियर को स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा वर्क्स, कैरेज एंड वैगन, मैकेनिकल वर्कशॉप, डिपो मटेरियल, सुपरिंटेंडेंट, सिग्नल, सिविल डिजाइन एवं ड्राइंग और इलेक्ट्रिकल TRD तथा केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पद भी शामिल हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड 330 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2107 पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती कराएगा। इन रिक्त पदों का विवरण उच्च शिक्षा निदेशक ने शिक्षा सेवा चयन आयोग ई अध्याचन पोर्टल पर शुक्रवार को अपलोड कर दिया है। आयोग रिक्तियों के विवरणों के परीक्षण के बाद भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। इसके पूर्व प्राचार्य के रिक्त 111 पदों का अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय पहले ही ऑनलाइन भेज चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए केंद्र निर्धारण प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। बोर्ड ने निर्देश पर प्रक्रिया में जनपदों के विद्यालयों को शामिल करने के जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले के सभी संबंधित विद्यालय अपने भौतिक संसाधनों और अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निर्धारित पोर्टल upmsp.edu.in पर अपलोड कर सकते हैं। ये कार्य परीक्षा केंद्रों के उचित और पारदर्शी चयन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी विद्यालय ये प्रक्रिया 20 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का प्रवेश 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो गया है। बेसिक शिक्षा के नए आयामों को साकार रूप देने के लिए विद्यालयों में स्मार्ट कक्ष, कंप्यूटर लैब और डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध हैं। लर्निंग बाय लैब और कौशल विकास लैब भी हैं। पीएमसी विद्यालयों के लिए त्रैमासिक परीक्षा और पत्रिकाओं का उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है। छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण और आत्मरक्षा किट प्रदान की जाएगी। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मनोरंजन हेतु खिलौने और झूले उपलब्ध कराए जाएंगे। संगीत क्लब के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। योग्य एवं कर्मठ शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प है। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा हेतु बाल वाटिका भी तैयार की जा रही है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वो 6 से 14 वर्ष के अपने सभी बच्चों का अपने नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में जाकर पंजीकरण कराएं और प्रवेश दिलाएं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 12547 और 12548 आगरा कैंट साबरमती एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 22547 और 22548 ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव की घोषणा की है। पीआरओ के अनुसार दोनों ट्रेनों का टर्मिनल स्टेशन साबरमती के बजाय अब गांधीग्राम स्टेशन होगा। साबरमती स्टेशन से गांधीग्राम स्टेशन की ट्रेन से दूरी मात्र 5 मिनट है। यात्री अपनी सुविधानुसार साबरमती अथवा गांधीग्राम स्टेशन कहीं भी उतर या चढ़ सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन बीना सेक्शन के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। आगरा रेल मंडल के पीआरओ के अनुसार काम के चलते रेलवे ने गाड़ी संख्या 17363 हुबली योगनगर ऋषिकेश एक्सप्रेस 13 जुलाई को और 17364 योगनगरी ऋषिकेश हुबली एक्सप्रेस 16 जुलाई को निरस्त रहेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए आगरा रेल मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों और परिसरों में 14 एटीएम स्थापित किए गए हैं। बताया गया है कि आगरा फोर्ट पर 3 एटीएम, मथुरा जंक्शन पर 4, अछनेरा बिचपुरी राजा की मंडी पर 1-1 और आगरा कैंट पर 4 एटीएम लगाए गए हैं। एटीएम के माध्यम से यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को नकदी निकासी और अन्य बैंकिंग सेवाएं रेलवे परिसर में ही सहज रूप से उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुविधाजनक एवं सुगम बनेगी। और अब आसपास कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रेमलता उर्फ रोशनी पुत्री सुग्रीव सिंह निवासी गांव दलेल नगर थाना एतमादपुर जनपद आगरा। प्रेमलता उर्फ रोशनी दिनांक 28 मई 2026 से शाम 5 बजे से अपने घर से लापता है। प्रेमलता उर्फ रोशनी की उम्र 19 वर्ष है। कद लगभग 4 फीट 9 इंच, रंग गोरा है, चेहरा गोल है, शरीर की बनावट सामान्य है, आंखें काली हैं, बालों का रंग हल्का सुनहरा है। घटना के समय नीले रंग का लोअर और नीले रंग का ही टी शर्ट पहना हुआ था। प्रेमलता और रोशनी के बारे में कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना एतमादपुर जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार छोटू पुत्र भगवान सिंह निवासी जऊपुरा थाना सिकंदरा जनपद आगरा। छोटू दिनांक 24 मई 2026 से अपने घर से लापता है। छोटू की उम्र लगभग 30 वर्ष है। कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला है, शरीर सामान्य है। छोटू के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी

0: थाना सिकंदरा जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना के अनुसार गुंजन पुत्री प्रेम सिंह निवासी बड़ा उखर्रा थाना सदर बाजार जनपद आगरा। गुंजन दिनांक 22 मई 2026 से अपने घर से लापता है। गुंजन की उम्र 19 वर्ष है, कद लगभग 5 फीट, शरीर सामान्य है। गुंजन के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना सदर बाजार जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 8 बजे ही अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात गोवा महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया

0: जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने

0: विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें।

0: the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे टी20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रूपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: बाद में शाम को वजीर आजम मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनंद इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज ओसैट से एक खुदकफील टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगमील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में

लता मंगेशकर की आवाज में आपने अनजान की गीत रचना सुनी। इसे संगीतबद्ध किया था राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम था शुभकामना। प्रिंस, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल फारूक कैसर के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, आवाज मोहम्मद रफी की।

मतवाली फिजा संसार सुहाना लगता है, मतहोश हवा मतवाली फिजा संसार सुहाना लगता है, कर लेना किसी से प्यार कहीं दिल

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे फारूक कैसर, मौसिकार शंकर जयकिशन। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है सीता और गीता।
1: अरे अरे ए

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आपने सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आइए अब सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दो बदन, गीत को गाया है आशा भोसले ने। शकील बदायूनी के बोल हैं, तर्ज रवि की।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे शकील बदायूनी के बोल। धुन बनाई थी रवि ने। फिल्म का नाम था दो बदन। आइए अब सुनते हैं साजन की सहेली फिल्म का एक गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार उषा खन्ना, आवाज मोहम्मद रफी की है।

साजन की सहेली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गजब फिल्म का एक सदाबहार गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गजब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए।

0: चार फिल्मी गाने अब हम आपको सुनवाएंगे सुर सरिता कार्यक्रम में 10 बजे। और आपको एक बार फिर याद दिला दें, पुराने फिल्मी गीतों का आप आनंद ले सकते हैं गीत मंजूषा कार्यक्रम में इसी सभा में 9:25 पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 9:15 हुए हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को अनुमति। नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
3: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमोचेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहाँ की कनेक्टिविटी हर तरफ से 4 लेन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। हम उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
4: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार प्राप्त होगा।
3: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों से शिक्षकों समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनावमुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों का ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की अच्छा देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्र छात्राओं ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में

0: बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
1: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
2: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं, जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
3: ये जो ODOC में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बढ़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ODOC में लिया।
2: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे। योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर HPDA ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। HPDA की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है, जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। HPDA क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर HPDA के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया, जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों को से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, CHC, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने करबला के शहीदों को शहादत को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। समय मिला लीजिए हमारे स्टूडियो की घड़ी में, इस समय सवेरे के 9:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा और ये है कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें हैं शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

ये आवाजें थी शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की। फिल्म का नाम था ब्लफ मास्टर। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का अगला गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है, SD बर्मन की तर्ज है और इस तर्ज पर गीत गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये था चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। अनुपमा फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। कैफी आजमी की गीत रचना को संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने।

किशोर कुमार की आवाज में ये था चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। अनुपमा फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। कैफी आजमी की गीत रचना को संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने।

आशा भोसले की आवाज में कैफी आजमी का लिखा गीत आपने सुना। धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने, फिल्म का नाम था अनुपमा। मदहोश फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीतकार हैं मदन मोहन।

लता मंगेशकर की आवाज में मदहोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार मदन मोहन। आइए अब सुनते हैं विपिन बाबुल की तर्ज पर एक बार फिर राजा मेहंदी अली खान के बोल। फिल्म का नाम है 24 घंटे। आवाजें हैं तलत महमूद और आशा भोसले की।

ये दो आवाजें थी तलत महमूद और अशब भोसले की, फिल्म का नाम था 24 घंटे। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब खत्म हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल वर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली लोक रचना।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल वर्मा। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा, इस सेवा पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 10 चैनल, वो भी अपने टेलीविजन सेट पर बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, डीटीएच पर आप सुन सकते हैं विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल मुफ्त, कहीं भी कभी भी। आकाशवाणी की डीटीएच सेवा का लाभ उठाएं। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम।
1: आकाशवाणी का ये डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा है।
2: डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा जो रहे आपके साथ हर दम हर क्षण 2400 घंटे दे आपको देश विदेश की जानकारी।

0: लजाए भरपूर मनोरंजन भी।
1: दूरियां नजदीकियां बन गई।
2: देश के चाहे किसी भी कोने में रहे आप, न सताएगी आपको अपने राज्य की याद। DTH के माध्यम से अपने राज्य के प्रादेशिक समाचार, गीत संगीत अपने ही राज्य के आकाशवाणी केंद्र से सीधे सुन पाएंगे आप।
3: बिलपुर में तो
0: कब कहा कैसे जुड़ पाएंगे अपने राज्य के आकाशवाणी केंद्र से आप, इसके लिए सुनते रहिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समय समय पर।
4: 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, प्रादेशिक समाचार 7 बजे आकाशवाणी भोपाल से और 8:30 बजे आकाशवाणी पटना से प्रसारित किए।
2: एक ही स्थान पर बैठे बैठे आनंद, हर राज्य का हर भाषा का, कमाल है केवल DTH सेवा का।
5: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल वर्मा।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल वर्मा के गाए ब्रज लोक गीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है सुरसरिता और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सुरसरिता कार्यक्रम का ये है पहला गीत। गीत लिखा है रानी मलिक ने, धुन बनाई है अन्नू मलिक ने। इस खूबसूरत संगीत की धुन से आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म बाजीगर का गीत है और इसे गाया है विनोद राठौर ने।

ये कर्णप्रिय और लोकप्रिय संगीत है नदीम श्रवण का। इसके लिए गीत लिखा है समीर ने, फिल्म का नाम है आशिकी और आवाज अनुराधा पौडवाल की।

0: आशिकी फिल्म का गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ। इसे लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये आवाजें थी अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की। फिल्म का नाम था धड़कन। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म साजन से। गीत एक बार फिर समीर का, संगीत नदीम श्रवण का, गायक कलाकार हैं एसपी बालासुब्रमण्यम।

साजन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे एसपी बाला सुब्रमण्यम। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत एक छोटे से विज्ञापन संदेश के बाद।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गीत

हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, इसे गाया था एसपी वाला सुब्रमण्यम ने, गीत के बोल लिखे थे देव कोहली ने, धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने। इसके साथ ही आज का सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। इस कार्यक्रम में आज आपने बाजीगर, आशिकी, धड़कन, साजन, कुछ कुछ होता है और हम आपके हैं कौन फिल्मों के गाने सुने। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर।

अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पंडित विश्वनाथ का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग ललित। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है रैन का सपना। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं जोगिया मोरे घर आ। आपके साथ सारंगी पर भारत भूषण और तबले पर ग्लैडविन चार्ल्स ने संगत की है। तो आइए सुनते हैं पंडित विश्वनाथ का गाया राग ललित।

Magarena.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वनाथ से ख्याल गायन, आप प्रस्तुत कर रहे थे राग ललित। विलंबित लय एक ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे रेन का सपना। द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध थी, जोगिया मोरे ये इसके बोल थे। सारंगी पर आपके साथ संगत कर रहे थे भारत भूषण और तबले पर ग्लैडविन चार्ल्स। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र मीडियम वेव 196.1 मीटर पर श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। आज का ये कार्यक्रम आधारित है संगीतकार M.M. करीम पर।

आज की कलाकार कार्यक्रम सुनने वालों सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज का ये कार्यक्रम सुरों के जादूगर एमएम करीम यानी केएम किरवाणी के ऊपर हम आपको सुनवा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं आपके प्रिय कार्यक्रम आज के कलाकार की। मैं आपकी अपनी साथी मनीषा उपाध्याय। दोस्तों, भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है उसका संगीत। ऐसा संगीत जो कभी प्रेम की भाषा बन जाता है, कभी भक्ति का स्वर, कभी देशभक्ति का जोश और कभी जीवन के संघर्षों का साथी। आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे ही एक विलक्षण संगीतकार से, जिसकी धुनों ने दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों तक अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, आज के कलाकार हैं के एम किरवाणी, जिन्हें हिंदी फिल्म जगत में एम एम करीम के नाम से भी जाना जाता है। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा, लोक संगीत की सहजता और आधुनिक संगीत की ऊर्जा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। तो आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं उनके एक लोकप्रिय फिल्मी गीत के साथ। सुनिए।

श्रोताओं, केएम किरवाणी का जन्म 4 जुलाई 1961 को हुआ था। हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में। जी हाँ, उनका पूरा नाम कोडोरी मराकतमणि किरवाणी है। संगीत उनके परिवार की परंपरा का हिस्सा था, इसलिए बचपन से ही उन्हें सुरों और लयों का वातावरण मिला। साथ ही उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीत निर्देशन की शुरुआत की। उनकी प्रतिभा ने बहुत जल्दी ही फिल्म जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और हिंदी फिल्मों में उन्होंने M.M. करीम नाम से संगीत दिया। उनकी धुनों में भावनाओं की गहराई और मधुरता ने श्रोताओं के दिलों में एक विशेष, एक खास स्थान बनाया है। उनका ऐसा ही गहराई वाला गीत सुनते हैं।

आज के कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा केंद्र से। दोस्तों, बात करते हैं करीम साहब को संगीत की दुनिया में पहचान कैसे मिली और कैसे बनी। यदि किरवाणी के संगीत की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले ध्यान आता है धुनों की आत्मीयता। वे मानते हैं कि किसी भी गीत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी धुन होती है, इसलिए उनके संगीत में शोर नहीं है बल्कि संवेदनाएं सुनाई देती हैं। उन्होंने रोमांटिक गीतों से लेकर भक्ति संगीत, लोक धुनों, सूफियाना अंदाज और बहुत भव्य ऑर्केस्ट्रा तक हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी फिल्मों में उनके जो संगीतबद्ध गीत हैं, जैसे तुम मिले दिल खिले, गली में आज चांद निकला, आवारापन बंजारापन, जो अभी आपने सुना, ये ऐसे कुछ गीत हैं जो आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद हैं। वहीं अगर दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनकी रचनात्मकता ने उन्हें करोड़ों श्रोताओं का प्रिय संगीतकार बना दिया।

दोस्तों, विश्व मंच पर भारतीय संगीत को ले जाने के बारे में अगर बात की जाए तो श्रोताओं, एमएम करीम का नाम विश्व भर में तब और अधिक चर्चित हुआ जब उन्होंने निर्देशक राजमौली की एक चर्चित फिल्म थी, सबने देखी होगी, जी हाँ, RRR, इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया उन्होंने। और एमएम करीम के संगीत ने भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। निर्देशक एसएस राजमौली की फिल्म RRR का गीत नाटू नाटू वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड में

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म गीत बना और इसी गीत को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा आरआरआर के संगीत के लिए एमएम किरवानी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म का ये गीत पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ और इस गीत ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत यानी कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता। ये भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने जो है इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम सम्मान मिले। उनकी ये सफलता जो है इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संगीत की मधुरता और गहराई विश्व के हर कोने तक पहुंच सकती है। ये संगीत की मधुरता को विश्व में एक नाम दिलाना एमएम करीम ने इस काम को कर दिखाया था। श्रोताओं एक और मधुर गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, एमएम करीम के बारे में हम बात करें हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में, और ये कलाकार ऐसे हैं, केवल एक सफल संगीतकार नहीं बल्कि ऐसे कलाकार

हैं जिन्होंने भारतीय संगीत को विश्व में पहचान दी, वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी धुनें हमें ये सिखाती हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वह सीधे दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के कार्यक्रम, आज के कलाकार कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे यानी मनीष उपाध्याय को दीजिए अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान कलाकार के जीवन और उनकी कला की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, संगीत सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अंत में एमएम करीम का संगीतबद्ध किया ये गीत भी सुनिए।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आज के कलाकार कार्यक्रम, और आज का ये कार्यक्रम आधारित था संगीतकार MM करीम पर। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ की, समसामयिक विषयों पर आधारित ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आज का विषय है सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर ये कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं, और इसी में वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाएं जीवन पाएं विषय पर भी हम बात करेंगे। तो आइए सुनते हैं कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं आपकी अपनी साथी मनीषा उपाध्याय। आज का हमारा विषय है वृक्ष।

लगाएं, जीवन पाएं। वन महोत्सव सप्ताह जो 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, वन महोत्सव सप्ताह, ये इस अवसर पर हम इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि श्रोताओं, हर वर्ष 1 से 7 जुलाई तक पूरे देश में ये सप्ताह मनाया जाता है। तो ये केवल एक सरकारी अभियान नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। वृक्ष हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते दोस्तों, बल्कि वर्षा, स्वच्छ जल, उपजाऊ मिट्टी, जैव विविधता और स्वस्थ जीवन का आधार भी हैं। तो आइए प्रकृति को समर्पित इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कैसे गीत से, जो जीवन की सुंदरता और प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश देता है।

दोस्तों, आपको पता है कि वृक्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भाई, यही हैं पेड़ पौधे जो धरती का श्रृंगार किया करते हैं। एक बड़ा पेड़ जब हो जाता है ना, तो प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध बनाता है। और ये वृक्ष ना गर्मी को कम करते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और हजारों जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। आज बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और बढ़ता तापमान,

एक बड़ा पेड़ जब हो जाता है ना, तो प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध बनाता है। और ये वृक्ष ना गर्मी को कम करते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और हजारों जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। आज बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और बढ़ता तापमान, ये सभी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि यदि हमने आज वृक्ष नहीं लगाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य बनाना कठिन होगा। वन महोत्सव सप्ताह हमें केवल पौधे लगाने की नहीं बल्कि उन्हें जीवित रखने की भी प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जन भागीदारी से हरित भारत की। श्रोताओं, वृक्षारोपण तभी सफल होगा जब ये जन आंदोलन बने। घर के आंगन में, विद्यालयों में, कार्यालय में, खेतों की मेड़ों पर, सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जगह पौधे लगाए जा सकते हैं। यदि हर नागरिक वर्ष में केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ वर्षों में देश का हरित क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से भी बढ़ सकता है। बच्चों को जन्मदिन पर पौधा लगाने की प्रेरणा दें, विवाह हो, शादी या अन्य शुभ अवसर, इन अवसरों पर पौधे उपहार में दिए जा सकते हैं और अपने आसपास के पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, पेड़ लगाना प्रकृति को उपहार देना है और पेड़ बचाना भविष्य को सुरक्षित करना है।

दोस्तों कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे हैं। और जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वन महोत्सव की, लेकिन इसके अलावा आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी है आज, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जुलाई के जब पहला शनिवार होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन के महत्व को बताना है और आर्थिक सामाजिक और सतत विकास में सहकारी संस्थाओं की जो भूमिका है उसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। अगर देखा जाए सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, सबका साथ सबका विकास और सबकी भागीदारी। सहकारिता दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी इच्छा से एकजुट होकर समान आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से काम करते हैं। और इसमें दोस्तों पता है लाभ से ज्यादा अधिक महत्व किस बात का है, सामूहिक हित, पारदर्शिता, समानता और सहयोग, इन सब पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भारत में तो सहकारिता आंदोलन का वैसे भी विशेष महत्व है क्योंकि कृषि, दुग्ध उत्पादन, बैंकिंग, विपणन, उपभोक्ता सेवाएं, ग्रामीण विकास, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर सहकारी समितियों ने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता प्रदान की है। विशेष रूप से किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समुदाय के जो सशक्तिकरण में सहकारी संस्थाओं का एक विशेष योगदान रहा है। आज के बदलते समय में भी सहकारिता समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और निरंतर आर्थिक प्रगति का एक बहुत प्रभावी माध्यम है। ये न केवल स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं बल्कि समुदाय में विश्वास, सहभागिता और सामाजिक एकता को भी मजबूत करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हमें ये संदेश देता है कि सामूहिक प्रयास, पारस्परिक विश्वास और सहयोग की भावना से ही एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। यदि प्रत्येक नागरिक सहकारिता की भावना को अपने जीवन में अपनाए तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो और मजबूत होगा। तो कहा जा सकता है सहकारिता केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, समान अवसर और सामूहिक प्रगति का सशक्त दर्शन है। तो दोस्तों सहकारिता की भावना को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। और अभी ये गीत सुने, फिर बात करेंगे पर्यावरण पर।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण की, तो हमारी जिम्मेदारी आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की चुनौती की है और इसका सभी सामना भी कर रहे हैं। तो बढ़ती गर्मी, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाएं, ये सब हमें चेतावनी दे रही हैं। वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। तो आइए, इस वन महोत्सव सप्ताह में हम एक संकल्प लें, हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, लगाए गए पौधे की नियमित देखभाल करेंगे, जल और पर्यावरण संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, आज लगाया एक पौधा आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी है। तो श्रोताओं, वृक्ष केवल प्रकृति का उपहार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो केवल पेड़ नहीं उगाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित भविष्य का बीज बोते हैं। तो इस वन महोत्सव सप्ताह पर आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें, एक व्यक्ति एक पौधा एक परिवार, हरित परिवार एक भारत हरित भारत। इसी संदेश के साथ मुझे मनीषा उपाध्याय को दीजिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, पर्यावरण बचाइए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। और अंत में सुनिए ये गीत।

श्रोताओ, अभी आप सुने थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम के आज के विषय थे सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर, साथ ही वन महोत्सव सप्ताह, इसका विषय वृक्ष लगाएं जीवन पाएं। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुनते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में भक्त सुदामा पर आधारित नौटंकी हम आपको सुनवा रहे हैं। आलेख लक्ष्मण सिंह खलीफा का है।

आकर।

0: स्वामी, ये दो मुट्ठी चावल पड़ोसी से मैं मांग के लाई हूँ, उनकी भेंट करी हूँ और अपनी व्यथा सुनाई हूँ, वे हमारी जरूर सहायता करेंगे।
1: अच्छा अच्छा, जा रहे हूँ भगवान, मैं जा रहे हूँ।

0: महाराज आप कहाँ जाएंगे? द्वारकापुरी तो यही है।
1: यही है?
0: हाँ महाराज।
2: तो भैया श्याम सुंदर सो हमारी मुलाकात करवा
0: जरूर कराऊंगा महाराज, जरूर कराऊंगा।

0: जो आ गया महाराज। सुदामा जी, आपको श्याम सुंदर जी ने बुलाया है।
1: अच्छा भैया चलो।
2: कहा भाई कैसी कही द्विजवर ने।

भक्त सुदामा, ये नौटंकी अभी आप लोक मंजरी कार्यक्रम में सुन रहे थे। आलेख लक्ष्मण सिंह खलीफा का था। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आज विश्व सहकारिता दिवस है और इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सबके साथ मिलजुल कर कार्य करें ताकि हमारी आर्थिक और सामाजिक उन्नति संभव हो सके। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आइए अब आपको सुनवाते हैं हम कार्यक्रम नए तराने नई फिल्मों से। हम फिल्म संगीत इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं। तो सबसे पहला गीत बनारस फिल्म से है जिसे आवाज दे रहे हिमेश रेशमिया। समीर का लिखा ये गीत है और संगीत हिमेश रेशमिया का।

ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना पीके मिश्रा के स्वर में। पीके मिश्रा का ही लिखा गीत था और संगीत कार्तिक राजा का। नए तरानी कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं टॉयलेट, एक प्रेम कथा फिल्म से ये गीत, जिसे सुर दे रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल। गरिमा बहल सिद्धार्थ सिंह का लिखा ये गीत है और गीत की धुन बनाई है विक्की प्रसाद ने।

मैं तरानी कार्यक्रम आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अगला गीत मिशन मजनू फिल्म से है। जुबिन नौटियाल के स्वर में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शब्बीर अहमद का लिखा हुआ, तनिष्क बागची का संगीतबद्ध किया हुआ गीत।

ये थे श्रीराम और शिल्पा राव फिल्म ये जवानी है दीवानी फिल्म में प्रीतम का संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम का अंतिम गीत यारियां फिल्म से मोहम्मद इरफान के सुर में आप सुनिए मिथुन का लिखा हुआ और संगीत एक बार फिर से प्रीतम का।

मोहम्मद इरफान की गाई यारियां फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण आप कुछ ही पलों में सुन पाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री

0: मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years, the scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency

0: इलाज को यकीनी बनाने के लिए रियासत गीर मरबूत ट्रामा और इमरजेंसी नेटवर्क के कयाम की हिदायत दी। एक रिपोर्ट।
1: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
0: वज़ीरे आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में आम की सयाहत को फरोग दिया जाएगा। इसे हासिल करने के लिए आम की तमाम इकसाम के लिए GI टैगिंग लगाई जाएगी। मेले में 50 ग्राम अंगूरदाना आम और 5 किलोग्राम वजनी गजानन आम तवज्जो का मरकज रहे। इस दौरान वज़ीरे आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
2: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, वहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए। ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
0: वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ज़रा शिवराज सिंह चौहान ने कल एक जायजा मीटिंग की, जिसमें अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों पर मामूल से कम बारिश और उसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिना खुश्क साली के हवाले से सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने वजारत ज़रात और तमाम मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करें, ताकि किसानों को मुनासिब फसलों की बुआई के बारे में मशवरा दिया जा सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीर 6 जुलाई 2026 को अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम इंतजामी और माली मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की गिनती की जांच करने वाली खसूसी तहकीकाती टीम SIT के नतायज भी शामिल हैं। 8 जून 2026 को जारी करदा एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के सदर की मंजूरी से खजानची स्वामी गोविंद देवगिरी की तरफ से इजलास बुलाया गया है, क्योंकि इन मसाइल पर बहस और फैसले की जरूरत है। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे मनी रामदास छावनी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होगी। एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से जमा कराए गए इस्तीफों पर गौर करना शामिल है। इस नोटिस में स्पीकर की इजाजत से किसी दूसरे मामले पर बहस का भी बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET का दूसरा दिन कल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोज़ा इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के दौरान एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से AI कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इम्तिहानी मराकज की निगरानी की। कमीशन के चेयरमैन डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET इम्तिहान के आखिरी दिन आज एक ही शिफ्ट में इम्तिहान लिया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्तों से शुरू हुई। तीसरा जत्था हफ्ते की सुबह यानी आज जम्मू के भगवती नगर में वाकई यात्री निवास से रवाना हुआ। कल रियासत के कई जिला में भारी से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ जिला में मरतूब गर्मी जारी रही। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी हिस्से के कुछ जिला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मगरबी जिला में गरज चमक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 96.1 मीटर पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनघट।

यो हम सफर उपासना पांडे, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगी, सुरक्षित होंगी। बहनों, आज हम करेंगे कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक काम की बात, और मनोरंजन के लिए होगा लोकगीतों का साथ। वैसे तो जगह जगह बहनों बरसात ने अपनी दस्तक दे दी है, पर मौसम में अभी भी गर्मी है, यानी बदरा गरजे तो खूब है पर अभी बरसे थोड़े कम हैं। और वैसे मैं इन दिनों वातावरण में नमी भी हो जाती है, और सूर्य देवता भी जमकर चमकते हैं तो उमस भरी गर्मी बहुत परेशान करती है। पर अच्छी बात यह है कि बारिश धीरे धीरे अपने साथ ठंडक का एहसास भी कराती है। भाई, बारिश तो हमारे लिए वरदान से कम थोड़ी है, जो कि विशेष महत्व रखती है, जो स्वयं के साथ साथ वातावरण में खुशी, जनमानस में खुशी और तपती धूप गर्मी में लोगों के लिए राहत लाती है। पर लेकिन बहुत सारी अच्छाइयों के साथ साथ थोड़ी परेशानी भी होती है, जिनसे बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, और ये हर मौसम में अलग अलग ध्यान रखनी होती हैं। ऐसे बहनों, कुछ सावधानियां बरसात के दिनों में भी बरती जाती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बरसात का मौसम जहां हरियाली, ठंडी हवा और सुकून लेकर आता है, तो वहीं साथ ही कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आती हैं। और ऐसे में अगर बहनों आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो बरसात के मौसम में भी खुद के साथ साथ अपने घर वालों को भी आप स्वस्थ रख सकती हैं। और इसके लिए सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है साफ सफाई। हम सब अपने घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। बहनों, इन दिनों नमी होती है तो बैक्टीरिया और फंगस जैसी परेशानी तेजी से बढ़ती है, इसलिए हमेशा सही ढंग से नहाने के बाद शरीर को अच्छे से साफ करके सूखे कपड़े पहने, क्योंकि बरसात के दिनों में अक्सर कपड़े पूरी तरह से धूप न लग पाने के कारण थोड़े थोड़े सीले रह जाते हैं और फिर वही हमें दिक्कत देते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई खुद की सफाई की, लेकिन इसी के साथ साथ और इतनी महत्वपूर्ण है घर की भी सफाई। जी हाँ, क्योंकि घर में या घर के आसपास गंदगी होती है तो वो बीमारियों के लिए आसानी से पनपने में मददगार होती है, इसलिए घर की सफाई का भी ध्यान रखें। जैसे कि सबसे ज़रूरी, अपने घर को साफ करने के साथ साथ अपने आसपास भी सफाई रखें। सारा कूड़ा करकट यूं ही एक जगह पर जमा ना करें, बल्कि कूड़ेदान में भर कर रखें, और जब कूड़े की गाड़ी आए तो सारा कूड़ा उसमें डालें। दूसरा, घर में अक्सर छतों पर काफ़ी सारा सामान हम रख देते हैं और जिनमें बरसात का पानी जमा होता रहता है, और फिर डेंगू मलेरिया के मच्छर आसानी से पनपते रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो भी कबाड़ है जो काम का नहीं है उसे कबाड़ खाने में बेचें, और जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं उन्हें ऐसे रखें जिनसे कि उनमें बरसात का पानी जमा ना होने पाए। दूसरा, आपने अपने घर पर पौधे लगाए हैं तो गमलों का पानी भी समय समय पर जल्दी जल्दी बदलते रहें, साथ ही कूलर के पानी को भी बदलते रहें, पानी को गंदा ना होने दें। दूसरा, आप घर में जो भी पानी भरकर रखते हैं अपने उपयोग के लिए उसे ढक कर रखें, क्योंकि हमेशा याद रखें डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में ही पनपता है। इसके अलावा घर के आसपास गड्ढे हैं तो हो पाए तो उन्हें पटवा दें, जिससे कि उनमें पानी जमा ना हो, कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने पाए। और अगर नहीं पटवा सकते हैं तो ना तो खुद घर का कूड़ा बाहर गड्ढों में डालें, ना और किसी को डालने दें। इसके अलावा इन दिनों कोशिश करें कि बाहर का खाना जितना हो सके कम खाएं, क्योंकि बाहर के खाने से भी काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, तो बस घर का खाना ही खाएं। अच्छा, घर पर भी खाने को हमेशा ढककर रखें। वैसे तो खैर खाने को हमेशा ही ढककर रखा जाता है, लेकिन विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और बासी खाना भी ना खाएं। दूसरा, जब भी आप बाहर से फल सब्जी लाएं तो उन्हें अच्छे से साफ पानी में धोकर ही रसोई में रखें, और पानी को अच्छे से उबाल कर ठंडा करके पिएं और खूब पानी पिएं। अच्छा, भोजन हल्का और पौष्टिक करें, क्योंकि बारिश के मौसम में बरसात के समय में कहीं ना कहीं हमारी जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए भोजन हल्का रखें और पौष्टिक रखें। अच्छा, इन दिनों मच्छरों की तादाद बहुत हो जाती है तो उनसे बचने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें, रात में मच्छरदानी का उपयोग करें, साथ ही हर 2 से 3 दिन में नीम की पत्तियों का धुआं करते रहें, और हो पाए तो बाजार में मच्छर को दूर भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकती हैं और बच सकती हैं डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से। अच्छा, इन दिनों गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहले तो अच्छा और पोषण युक्त भोजन करें, दूसरा नियमित जाँच कराते रहें,
इसके

अलावा अगर बुखार, उल्टी, दस्त या किसी भी असामान्य परेशानी हो तो उसको नजरअंदाज ना करें, ना ही उसके लिए खुद डॉक्टर बनते हुए दवा लें, बल्कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं जिससे कि माँ और बच्चा दोनों सही सलामत रहें। अच्छा, बाकी सब भी ये ध्यान रखें कि इन दिनों वायरल बुखार इत्यादि की भी परेशानियाँ बहुत होती है, तो यदि आपको भी अपने स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखे तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत लें, जिससे कि आप जल्दी से सही हो जाए, बीमार ना पड़े। अच्छा, अगर आप बारिश में भीग भी जाएं तो तुरंत साफ पानी से नहा करके अपने कपड़े बदलें, ज़्यादा देर तक भीगे ना रहें, और बस इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बरसात का आनंद लें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और बहनों, ये कोई नई बातें नहीं है, ये हमेशा ही हमें कुछ बातें होती हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं हर मौसम में, जैसा कि कहा मैंने भी, अलग अलग होती हैं, तो बरसात के मौसम में यही बातें होती हैं और हर बारी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें स्वस्थ रखती हैं, हमारे परिवार को भी स्वस्थ रखती हैं। तो बहनों, बात बारिश की हो रही है तो आइए हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से लुत्फ़ लेते हैं बारिश का इस लोकगीत के साथ।

0: कार्यक्रम में आगे हम सुनेंगे हमारी आज की खास वार्ता, जिसका विषय है कृषि में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार हैं असीम निधि।
1: प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में महिलाओं का योगदान विशेष रूप से कृषि में रहा है। एक लंबे समय से कृषि क्षेत्र में प्रगति होने से कृषक महिलाओं का काम काफी बढ़ गया है। आजकल कृषि के लिए मजदूरों व घर पर कार्य करने के लिए सेविकाओं की कमी हो गई है। अब खेती के कार्यों को सुचारू रूप से समय पर पूरा करने के लिए एवं घर की खुशहाली लाने के लिए हमारी ग्रामीण बहनों को किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है। कृषक महिलाएं खेत से लेकर घर तक अपने अनेक दायित्वों को पूरा करती हैं। खेती के कार्यों में महिलाएं अधिक से अधिक सहयोग देती हैं। फसल अच्छी तभी मिलती है जब सभी मिलजुल कर कार्य करें। महिलाएं खेती में जुताई, बुवाई, उर्वरक लगाना, निराई करना, गुड़ाई करना, पानी लगाना, पौध लगाना, फसल कटाई करना, अनाज व बीज भंडारण, पशुओं को चारा देना, दूध निकालना आदि कार्यों में किसानों का कंधे से कंधा लगाकर सहयोग देती हैं। गोधन गजधन बाजधन से स्पष्ट है कि अतीत में भी पशुपालन का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व रहा है। वर्तमान में भी इसका महत्व और भी बढ़ गया है। सभ्यता के प्रारंभ से ही कृषि एवं महिलाओं का गहरा संबंध रहा है। अधिकतर कृषि व पशु के कार्य महिलाओं के सहयोग से ही पूर्ण होते हैं। खेती आज के भारत की आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शहरीकरण व पाश्चात्य सभ्यता की नकल में जरूर हमको अंधा बना दिया है, जिससे किसान जमीन बेचकर शहरों की तरफ भागने लगा है, जहां हमें मशीनों पर रहना पड़ता है। किसान बहनों, अपनी खेती की जमीन मत बेचो, उसको अच्छी तरह से अच्छी तकनीक लगाकर उपज को बढ़ाओ, तभी गांव की गरीबी दूर हो सकती है। आज भी बहनों, अगर खेत व पशुपालन से केवल दुग्ध व्यवसाय को ही ले लें तो हमारे देश व समाज का बहुत भला होगा। महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनेंगी। शहर व गांव के सभी वर्गों को अनाज, सब्जी व दूध की आवश्यकता होती है। शहर व गांव सभी जगह लोग शुद्ध अन्न, दाल, सब्जी, दूध हेतु तरसते हैं। इसके अभाव में शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बुरा असर हो रहा है। महिलाएं ही खेतों में बुवाई, निराई, गुड़ाई, पानी लगाना, फसल कटाई, अनाज भंडारण आदि कार्य करती हैं। पशुओं को चारा देना, पानी देना, दूध निकालना आदि कार्य भी महिलाएं अच्छी तरह करती हैं। शुद्ध दूध अमृत तुल्य माना जाता है। दूध से ही मक्खन, घी, छाछ, पनीर, छेना, खोया की प्राप्ति होती है। दूध जीवनदायक होता है। वहीं इससे प्राप्त अन्य सामग्री से भोजन में पौष्टिकता तथा विविधता आती है। यदि इस पर ध्यान दें तो एक पूरे परिवार का पालन 5 दूध देने वाले पशु कर सकते हैं। खेती व पशु दोनों के सहयोग से परिवार का पालन और भी अच्छी तरह किया जा सकता है। खेती में पशु का गोबर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे जमीन

0: उर्वरक शक्ति बढ़ती है। गोबर से कंपोस्ट व केचुआ खाद तैयार की जाती है। महिलाएं घर का कूड़ा करकट व गोबर एक जगह एकत्रित करती रहती हैं, जो खेती के लिए अच्छी खाद बनाता है। पशु व खेती का तालमेल ठीक बैठता है। पशु दूध के साथ साथ हमें बहुमूल्य खाद प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। कुछ जगह बहनें आज भी कंडे बनाकर इसका प्रयोग कर रही हैं, यह गलत है। गोबर की खाद रासायनिक खादों से अधिक उपयोगी होती है। कृषि व पशुधन का भी विशेष महत्व है। भारत की बहुत आबादी गाँव में रहती है। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तथा उसके उत्पादित फसल को मंडी ले जाने तक में महिलाओं का विशेष योगदान है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतवर्ष की कृषि व्यवस्था काफी हद तक कृषि के विकास पर आधारित है। देश में खासकर गांव में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम खेती बाड़ी है। कृषि की आधी पूंजी की हकदार ग्रामीण महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के ताजा अध्ययनों के अनुसार विश्व में अनाज का 50% से भी अधिक उत्पादन महिलाएं करती हैं। हमारे देश में भी 60% से अधिक महिलाएं गांव में किसी न किसी रूप में कृषि कार्यों से संबंधित रोजगार में लगी हुई हैं। आम धारणा यह है कि केवल शहरी औरतें ही नौकरी आदि करके परिवार को चलाने में सहायक हैं, लेकिन गाँव में धनार्जन महिलाएं करती हैं, परोक्ष रूप में कृषि उत्पादन में सहायक हैं। महिलाएं पशुपालन करके अनाज रखने के अस्थाई भंडार बनाकर खाद के लिए गोबर इकट्ठा करके किसान के साथ मिलकर कार्य करती हैं। खेती बाड़ी में महिलाओं के योगदान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वयं कृषि के विकास का इतिहास। ग्रामीण महिलाओं के श्रम के घंटे पुरुष की अपेक्षा अधिक होते हैं। महिलाएं आर्थिक महत्व की गतिविधियों में भाग लेने के साथ साथ गृहिणी के रूप में भी अपने विविध कार्य उत्तरदायित्व निभाती हैं। बहनों, खेती बाड़ी में आप अपने परिवार के लोगों के साथ और अधिक मन लगाकर काम करेंगी तो आपके परिवार की आय भी बढ़ेगी और आप आर्थिक तंगी से उभर सकेंगी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगी।
1: तो बहनों, आपने सुनी हमारी आज की खास वार्ता, जिसका विषय था कृषि में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार थी असीम निधि। और वक्त हो गया है कार्यक्रम में आगे मनोरंजन का, पर उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: और गाना कितना बड़ा है? तो आइए बहनों, सुनते हैं ये लोकगीत।

बहनों, वक्त है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले झांकेंगे दादी के पटुआ में। जैसा कि मैंने अपनी चर्चा के दौरान भी कहा था कि थोड़ी सी भी बीमारी महसूस हो, थोड़ी सी भी स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन साथ ही साथ ज़माने से हमारी दादी के नुस्खे भी काम करते आ रहे हैं, तो इसीलिए अगर गले में हल्की खराश है या ज़ुकाम महसूस हो रहा है तो आप अदरक, तुलसी और काली मिर्च की चाय बनाकर पिएं, आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इस चाय में शहद भी मिला लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये गले की खराश को बड़ी जल्दी से दूर करता है। इसके अलावा अक्सर करके जब बारिश में भीग जाते हैं या वैसे भी हर बदलते मौसम में कहीं ना कहीं हल्का दर्द या अकड़न सी बनी रहती है, तो उससे निजात पाने के लिए आप सरसों के तेल में लहसुन की कलियां गर्म करके अच्छे से उसे ठंडा कर लें और फिर उससे हल्की मालिश कर रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा और दर्द और अकड़न से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर परेशानी थोड़ी बड़ी है तो डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लें। इसी के साथ मुझे विदा दें, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।

पनघट ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 96.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम का समय है ये और दोपहर के 1:45 हुए हैं और ये समय सुगम संगीत का रहता है। तो आइए डॉक्टर शोभी माथुर के स्वर में कुछ भजन हम आपको सुनवा रहे हैं। सबसे पहला भजन कबीरदास का लिखा हुआ, आइए सुनते हैं।

नारायण दास के लिखे इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने डॉक्टर शोभी माथुर के स्वर में कुछ भजन सुने। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र मीडियम वेव 196.1 मीटर पर श्रोताओं कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: more from our Mumbai correspondent.
1: The India Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai, Thane, Palghar, Raigad and the ghat areas of Satara, Pune and Nashik. Water levels in rivers across Sindhudurg, Ratnagiri and Palghar districts are rising, with officials closely monitoring the situation. Heavy rain has been lashing Mumbai since morning, marking the fifth consecutive day of persistent rainfall across the city and suburb. Suburban train services on all three railway lines are running with delays of around 10 to 15 minutes, while road traffic remains largely smooth. Rain is also continuing in the catchment areas of the dams that supply water to the city. Schools and colleges have declared a holiday for the afternoon session due to the heavy downpour. Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
0: Meanwhile, IMD has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh, coastal Karnataka, East Rajasthan, Telangana and Vidarbha till tomorrow. In Iran, preparations are underway for the six-day state funeral of former Supreme Leader Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. The funeral procession will continue over the next few days before concluding with his burial in the holy city of Mashhad on the 9th of this month. In men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening, Indian time. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterler Street. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport. Home Ministry designates 23 Pakistan-based individuals as terrorists under UAPA. Centre issues notice to Telegram messaging app over widespread piracy reports. Asked to submit report within 15 days. Bilateral investment agreement between India and Israel comes into force today. IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. And in men's cricket, India to face host England in second T20 international in Manchester this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
3: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का

0: माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय

0: सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित

0: की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी आगरा है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में शुभ्रा तलेगांवकर से आप गायन सुनेंगे। पहले आप सुन रहे हैं जिसके बोल हैं तो उसे बोलू ना।

गुंदियन बरसन लागी। इन बोल के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने शुभ्रा तलेगांवकर से गायन सुना। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से गीत, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। सबसे पहला गीत पारस फिल्म से लिया गया है, जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार वर्मा। मलिक का लिखा ये गीत है और गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

हमारा घोड़ी निकली आगे, कर गई घोड़े को वो जाते जाते आंख मटक्का, देख छलांगे घोड़ी की मैं रह गया हक्का बक्का। वाड़ी पांच सौ की घोड़ी मार गई, पांच सौ की घोड़ी मार गई, 6000

ये थे हमारा रोहदास और सुमन कल्याणपुर फिल्म विश्वास में। गुलशन बाबरा का लिखा ये गीत और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, शब्द जानिसार अख्तर के और संगीत जयदेव का, स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम प्रेम पर्वत।

लता मंगेशकर के गाए प्रेम पर्वत फिल्म के इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजे हैं और ये समय है लोकप्रिय फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंचन का। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रेम वंदन फिल्म से गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

बात एक रात की। इस फिल्म में अभी आप सुने थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत रचना एस डी बर्मन की। जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा ये गीत आशा भोसले के स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

पप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में माया गोविंद का लिखा यह गीत अभी आप सुन रहे थे झूठी फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत गुंजन कार्यक्रम का अंतिम गीत चलते चलते फिल्म से हमने लिया है, सुलक्षणा पंडित और पप्पी लहरी के स्वर में। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है, संगीत पप्पी लहरी का।

सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी के गाए चलते चलते फिल्म की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.5 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है।

0: ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता उस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोता इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सूर संध्या। 5:30 पर समय है युववाणी का, जिसमें आज हम आपसे करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पर। इसके अलावा सुनिएगा रिद्धि गोस्वामी की वार्ता, विषय होगा भारत में सहकारिता आंदोलन का विकास और चुनौतियां। इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक 6 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे प्रेमपाल जादौन से उनकी वार्ता, बाजरे की उन्नत खेती। चर्चा का विषय रहेगा एम पैक्स सदस्यता। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मंडी भाव की और मौसम की। आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। छह बजकर 30 मिनट पर हमारे श्रमिक भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। इसमें चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। वार्ता होगी मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले रोग और उनका उपचार विषय पर। इसके अलावा हमारे श्रोता आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। श्रोता 7 बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम होगा विविधा। इसमें सुनेगा वार्ता ग्लोबल वार्मिंग के आसन्न खतरे विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजीव जैन। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7 बजकर 31 मिनट पर। फिल्मों से भजन हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम भजन संध्या में रात्रि 8 बजे। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 8 बजकर 30 मिनट पर।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका साहित्य भारती कार्यक्रम और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। तो ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों पर एक नजर, और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर। 6:25 पर चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे 6:35 पर। 6:45 पर कार्यक्रम होगा खेती की बातें, जिसमें विनय कुमार की वार्ता होगी पशु खाद्य प्रबंधन।

सुबह 7:31 पर श्रोता सुनेंगे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर सुनेगा डॉक्टर ब्रिज बिहारी लाल वर्मा के गाए ब्रिज लोकगीत।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भजन।

0: श्रोताओ, लोफर फिल्म से ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था महेंद्र कपूर ने, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला वचन हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के तुरंत बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म 10 लाख से ये भक्ति गीत, जिसे लिखा था प्रेम धवन ने और संगीतबद्ध किया था रवि ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म शागिर्द से ये भक्ति गीत।

श्रोता लता मंगेशकर के गाए फिल्म चित्रलेखा के इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट प्रकीर्णा को। तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत दिन बिता रहे होंगे। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई ऐसे इवेंट्स आते हैं जब हमें किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती है ना? आजकल लोग साथ होकर भी अकेला फील करते हैं, हर चीज़ में कम्पीट करने का सोचते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचे तो क्या समाज आगे बढ़ पाएगा? और अगर लोग कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन यानी सहयोग का रास्ता चुने, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ें, तो क्या तस्वीर कुछ और नहीं होगी? दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज हम एक बहुत ख़ास दिवस मना रहे हैं, जो हमें साथ मिलकर काम करने, सहयोग की भावना अपनाने और सामूहिक विकास का संदेश देता है। ये कौन सा दिवस है? इसका जवाब क्या आपको पता है? अगर नहीं तो आप पता लगाइए, और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सब्र रखना होगा और ध्यान से प्रोग्राम सुनना होगा। तो अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे परिवार और सहयोग की, और मुझे लगता है दोस्तों कि परिवार में जब कोई नन्हा मेहमान आने वाला होता है ना, तब सबसे ज़्यादा साथ और केयर की ज़रूरत होती है एक होने वाली माँ को। किसी भी परिवार में जब ये खुशखबरी मिलती है तो पूरे परिवार की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। घर में नए नए सपने सजने लगते हैं, नन्हे कपड़ों की बातें होने लगती हैं और आने वाले बच्चे के नाम तक सोच लिए जाते हैं। लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, माँ और होने वाले बच्चे की सेहत। अब आप ही बताइए, अगर गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर सही हेल्थ चेकअप ना हो, ज़रूरी मेडिकल टेस्ट ना कराया जाए या किसी बीमारी का समय रहते पता ही ना चले, तो क्या माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ सकती? तो बस इसी समस्या का समाधान करती है भारत सरकार की ये स्कीम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसे हम PMSMA के नाम से भी जानते हैं। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा शुरू किया गया एक विशेष नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है कि देश की हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान क्वालिटी एंटीनेटल केयर यानी बेहतर और सुरक्षित प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। दोस्तों, इस अभियान

के तहत हर महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं का फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, वेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड और माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य आवश्यक जांचें भी की जाती हैं। और अगर किसी गर्भवती महिला में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के संकेत दिखाई देते हैं, जैसे बहुत अधिक या बहुत कम रक्तचाप, अनीमिया, डायबिटीज़ या कोई और जटिलता है, तो उसकी पहचान समय रहते कर ली जाती है और उसे आगे के इलाज और विशेष देखभाल के लिए रेफरल भी दिया जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई महिलाएं ये सोचकर नियमित जांच नहीं कराती कि उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही, लेकिन कई बार गंभीर समस्याएं शुरुआती चरण में बिना किसी सिम्टम के भी हो सकती हैं। ऐसे में नियमित एंटीनेटल चेकअप माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस अभियान में जांच के अलावा गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन, संतुलित आहार, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, आवश्यक वैक्सीनेशन, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। कई ऐसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र होते हैं जहां विशेषज्ञ डॉक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं की समय पर विशेषज्ञ जांच हर जगह संभव नहीं हो पाती। दूसरी चुनौती है जांच सुविधाओं में असमानता। कई ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट और बाकी ज़रूरी जांचों की पूरी व्यवस्था नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जागरूकता की कमी। आज भी कई महिलाओं और उनके परिवारों को ये जानकारी नहीं होती कि हर महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क एंटीनेटल चेकअप की सुविधा उपलब्ध होती है। और दोस्तों, इस एक दिन भी गर्भवती महिलाओं को कितनी भीड़ का सामना करना पड़ता होगा, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। तो अगर आपके परिवार, पड़ोस या जान पहचान में कोई गर्भवती महिला है, तो उन्हें ये ज़रूर बताइए कि वो हर महीने की 9 तारीख को अपना नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाकर इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि समय पर की गई एक छोटी सी जांच माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को सुरक्षित बना सकती है।

वेलकम बैक दोस्तों। सेहत और सहयोग की बात तो हमने कर ली, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं, और वो है फाइनेंशियल विजडम। दोस्तों, ITR के बारे में बहुत सुना होगा आपने, लेकिन अक्सर ये समझने में मुश्किल लगता है। बहुत से लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन सच तो ये है कि आज के समय में नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, फ्रीलांसर्स और कई अन्य लोगों के लिए भी ITR फाइल करना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो आइए आज आसान भाषा में समझते हैं कि ITR आखिर होता क्या है और कौन सा ITR फॉर्म किसके लिए होता है। दोस्तों, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारी कितनी इनकम हुई, कितना टैक्स बना, कितना टैक्स हमने पहले ही जमा किया, और अगर ज़्यादा टैक्स कट गया है तो हमें रिफ़ंड मिलना चाहिए या नहीं। ध्यान रहे, ITR भरने का मतलब हमेशा टैक्स देना नहीं होता। अगर आपकी इनकम टैक्स लिमिट से कम है, तब भी कई मामलों में ITR फाइल करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे लोन लेने में, वीज़ा अप्लाई करने में या इनकम प्रूफ के रूप में। अब सवाल आता है, इतने सारे ITR फॉर्म्स क्यों होते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की इनकम का सोर्स अलग अलग हो सकता है, इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 की, इसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है। अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक है और आपकी कमाई सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या बैंक इंटरेस्ट जैसे सोर्सेस से होती है, तो आमतौर पर ITR 1 आपके लिए होता है। यानी अगर आप एक सामान्य सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपको यही फॉर्म भरना होगा। अब बात करते हैं ITR 2 की। मान लीजिए आपकी इनकम सैलरी से नहीं बल्कि कैपिटल गेन यानी प्रॉपर्टी बेचने या फिर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स जैसी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाने से हुई है, लेकिन आपका कोई बिजनेस नहीं है, ऐसे में आपके लिए होता है ITR 2। अब ITR 3 की बात कर लेते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट या फ्रीलांसर हैं और आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल वर्क से होती है, तो आपको ITR 3 भरना होता है। बात करें ITR 4 की, तो इसे हम सुगम फॉर्म भी कहते हैं। ये उन छोटे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए है जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत टैक्स भरते हैं, यानी जिनकी इनकम का हिसाब सरकार के तय नियमों के अनुसार आसान तरीके से

0: लगाया जाता है। ये भी उन इंडिविजुअल्स HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कुछ फर्म्स के लिए है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपए तक हो। अब ITR 5 और ITR 6, ये फॉर्म्स आम लोगों के लिए नहीं होते दोस्तों। ITR 5 मुख्य रूप से LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कुछ फर्म्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी AOP जैसी संस्थाओं के लिए होता है, जबकि ITR 6 अधिकतर कंपनीज द्वारा भरा जाता है। और आखिर में ITR 7 की बात करें, ये उन ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और अन्य विशेष संस्थाओं के लिए होता है जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट की कुछ विशेष धाराओं के तहत रिटर्न फाइल करना होता है। तो दोस्तों, यही थे इनकम टैक्स रिटर्न के 7 फॉर्म्स, और उम्मीद है कि अब ITR और उसके अलग अलग फॉर्म्स आपको पहले से कहीं ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। और सही ITR फॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है, गलत फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है और बाद में परेशानी भी हो सकती है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर टैक्स कंसल्टेंट से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, अभी हमने बात की ITR फॉर्म के बारे में, अब आप आज के सवाल के जवाब का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यह हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन के महत्व के बारे में जागरूक करना और ये बताना है कि मिलजुल कर काम करने से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को कैसे लाभ होता है, भारत में सहकारिता आंदोलन का विकास कैसे हुआ और क्या चुनौतियां रहीं। आइए जानते हैं वार्ताकार रिद्धि गोस्वामी से।
1: सहकारी आंदोलन यानी कि एक ऐसा प्रयास जहां लोग स्वेच्छा से एकजुट होकर साझा स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सामूहिक सेवा और समृद्धि हासिल करना होता है। वैसे तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, जब वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट लागू किया। इसके जरिए किसानों को साहूकारों से बचाने की कोशिश की गई। फिर 1912 में गैर ऋण सहकारी समितियों को मान्यता मिली और आजादी के बाद तो इस आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा मिली। तब देश में औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना था और उन्हें अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत में सहकारिता आंदोलन के विकास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जिन्होंने इस आंदोलन के क्रमिक विकास को गति प्रदान की। सन 1904 में सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया था जिसने सहकारिता समितियों के गठन और पंजीकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसके बाद सन 1912 में सहकारिता समिति अधिनियम में संशोधन किया गया जिसने सहकारिता समितियों के कार्यों और शक्तियों को विस्तारित किया। आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसे ग्रामीण विकास की रीढ़ माना। सहकारिता को पंचवर्षीय योजनाओं का अहम हिस्सा बनाया गया। सरकार का मानना था कि अगर गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। सहकारिता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों की बात यदि की जाए तो समाज में आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सहयोग और सहकारिता के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उन्हें अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य लोगों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें अपने सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस आंदोलन का मकसद समाज के सभी वर्गों के विकास और संवर्धन के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। सहकारिता आंदोलन के अपने कई लाभ होते हैं, जैसे पहला, सहकारिता आंदोलन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर सकता है और उन्हें अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। दूसरा, सहकारिता आंदोलन लोगों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर सकता है और उन्हें अपने सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तीसरा, सहकारिता आंदोलन समुदायों के विकास में योगदान कर सकता है और लोगों को अपने समुदाय के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। चूंकि सहकारिता आंदोलन सामूहिकता और समन्वय के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए सहकारिता आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना

0: करना पड़ता है। जैसे पहला, सर्वप्रथम किसी भी सहकारिता आंदोलन को वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो इसके विकास और विस्तार को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार के कारण कभी-कभी संस्थाएं कर्ज में डूब जाती हैं और पारदर्शिता की कमी से विश्वास भी घटता है। दूसरा, सहकारिता आंदोलन को प्रबंधन और शासन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करता है। तीसरा, इसके अलावा सहकारिता आंदोलन के बारे में जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है, जो इसके विकास और विस्तार को प्रभावित करती है। चौथा, तकनीकी पिछड़ापन, बहुत सी संस्थाएं अभी भी डिजिटल और ई गवर्नेंस से दूर हैं। सहकारिता आंदोलन के भविष्य को दिशा एवं गति देने के लिए सरकारी समर्थन जरूरी है। पहला, प्रशिक्षण और शिक्षा जागरूकता के लिए प्रबंधन और लेखांकन का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, डिजिटलीकरण के माध्यम से सभी सहकारी संस्थाएं ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ें। तीसरा, स्वायत्तता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाकर स्वायत्त रूप दिया जाए। चौथा, युवा भागीदारी को बढ़ाकर युवाओं को तकनीकी सहकारिता स्टार्टअप को ऑप्स में जोड़ा जाए। निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी भी सहकारिता समितियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है। साथ ही सहकारिता आंदोलन के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा सकता है। इससे लोगों को सहकारिता के महत्व और लाभों के बारे में पता चलेगा और वह सहकारिता समितियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ ही सहकारिता समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए काम किए जाने की महती आवश्यकता है। इससे वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से चला सकेंगी और अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता समितियों की सदस्यता बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है, जिससे अधिक लोग सहकारिता के लाभों का आनंद ले सकें। सहकारी समितियों के बीच नेटवर्किंग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा सकता है, जिससे वे एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और अपने कार्यों में सुधार कर सकें। साथ ही सहकारी समितियों के कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करके उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। ये सही है कि सहकारिता आंदोलनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनके विकास और विस्तार के लिए कई अवसर भी रहते हैं। यदि सरकार और नागरिक मिलकर समाज में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और इसके विकास में सहयोग करने के लिए मिलकर काम करें, तो ये सामाजिक समृद्धि और उत्थान के लिए वरदान साबित हो सकता है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता भारत में सहकारिता आंदोलन का विकास और चुनौतियाँ, वार्ताकार रिद्धि गोस्वामी से। साथियों, सहयोग की भावना ही किसी भी समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज का ये दिवस हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ आगे बढ़ने में है। तो ये बात हमने करी सहकारिता आंदोलन के बारे में। अब वक्त है इस सप्ताह की कुछ खास खबरों को जानने का। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 की, जिसके लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। इनोवेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सोशल सर्विस और ब्रेवरी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के आने वाले विदेशी दौरे के बारे में। 6 जुलाई से प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य व्यापार, रक्षा, तकनीक, शिक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। खास बात यह है कि 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा होगी, जो भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और खास खबर यह है कि केंद्र सरकार जल्द ही मॉडिफाइड उड़ान स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है, जिससे पर्यटन, रोजगार और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों, अब बात करें खेल जगत की, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब राउंड ऑफ 16 यानी नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुका है। अब हर मैच करो या मरो की स्थिति वाला है।

से दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नज़रें इन मुकाबलों पर है। और मौसम की बात करें तो IMD ने देश के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। लोगों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। वैसे दोस्तों, बारिश का मौसम थोड़ा नॉस्टैल्जिक तो होता है, हालांकि कुछ परेशानियां भी होती हैं, पर बारिश में भीगने का मन किसका नहीं करता। तो दोस्तों, इस मौसम को पूरा एंजॉय करिए दोस्तों के साथ, चाय पकौड़ों के साथ और इस आइकॉनिक गाने के साथ।

साथियों, उम्मीद है ये गाना और आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी अपनी दोस्त प्रकीर्णा के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं अपना दैनिक कार्यक्रम ग्राम्य लोक और आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी शोभना। स्वीकार करिए हमारे राम राम। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज खेती पहले से कहीं अधिक आधुनिक होती जा रही है। अच्छी फसल लेने के लिए समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद, सिंचाई, खेती के लिए ऋण और अपनी उपज का सही दाम मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार जानकारी की कमी या फिर अलग अलग जगहों के चक्कर लगाने के कारण हमारे किसान भाई बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार और सहकारिता विभाग लगातार इस प्रयास में है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उनके अपने गांव या फिर आसपास ही उपलब्ध हो जाएं, ताकि समय भी बचे और खेती का काम भी आसानी से हो सके। इसी सोच के साथ सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि वे केवल ऋण देने तक सीमित ना रहें, बल्कि हमारे किसानों की खेती और आजीविका से जुड़ी कई सारी जरूरतों को एक ही स्थान पर पूरा कर सकें। यही कारण है कि आजकल एमपैक्स यानी कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की चर्चा ज्यादा हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एमपैक्स आखिर है क्या, इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा और वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं। तो किसान साथियों, आइए आज इसी विषय पर सरल और आसान भाषा में बात करते हैं। तो बात करते हैं एमपैक्स की, यानी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की। भाइयों, पहले समय में सहकारी समितियां मुख्य रूप से किसानों को खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब इनको और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि किसानों को एक ही जगह पर कई सारी सुविधाएं मिल सकें। इसी कारण से इनको बहुउद्देशीय यानी कि एमपैक्स बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इससे हमारे किसानों को फायदा क्या है। मान लीजिए कि आपको खेती के लिए ऋण चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के आपको बीज चाहिए, खाद चाहिए या फिर अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए आपको गोदाम की सुविधा चाहिए। पहले इन कामों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, लेकिन एमपैक्स का उद्देश्य है कि ऐसी कई सारी सुविधाएं गांव के आसपास ही उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि हमारे किसान साथियों को सुविधा हो जाए और वो आसानी से इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। इतना ही नहीं किसान साथियों, कई एमपैक्स में समय के साथ जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, भंडारण, डेयरी, मछली पालन और अन्य ग्रामीण सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं, जिससे हमारे गांव के लोगों को अधिक सुविधा मिल सके। अब बात करते हैं कि हमारे किसान इससे कैसे जुड़ सकते हैं। किसान साथियों, एमपैक्स या फिर पैक्स का सदस्य बनने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऑनलाइन करने के लिए क्या प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश के निवासी एमपैक्स सदस्यता महाअभियान पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर

मेंबर रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई फॉर मेंबरशिप विकल्प को आपको चुनना है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज उस पर आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ज़मीन के आपके दस्तावेज़ों, खसरा खतौनी हो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो, और आपको जो भी उसमें शुल्क है वो जमा करना होता है। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी प्राथमिक कृषि साख समिति कार्यालय या फिर ज़िला सहकारी बैंक शाखा में जाएं, वहाँ से सदस्यता आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन के दस्तावेज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएं और इससे संबंधित समिति के सचिव या फिर अधिकारी के पास आप उसको जमा कर दें। किसान साथियों, सदस्य बनने के बाद आप समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, एमपैक्स का उद्देश्य यही है कि किसानों को खेती से जुड़ी ज़रूरी सेवाएँ गाँव के नज़दीक और एक ही स्थान पर मिल जाएँ। इसीलिए यदि आपके क्षेत्र में एमपैक्स कार्य कर रहा है तो उसकी जानकारी अवश्य लें, सदस्य बने और उपलब्ध सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। किसान भाइयों, जो हमारा जीवन है ना, वो बहुत ही अनमोल है। समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता, इसीलिए हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। संसार के काम तो चलते ही रहेंगे भाई, हम खेती भी करेंगे और बीज भी लेंगे, सभी काम करेंगे, लेकिन ईश्वर का स्मरण हमें सच्ची शांति और आत्मिक शक्ति देता है। इसी सुंदर संदेश को बड़े ही मधुर से शब्दों में प्रस्तुत करता है ये हमारा लोकगीत, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन यूं ही बीत ना जाए, बल्कि प्रभु भक्ति में कुछ समय हमें अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आइए किसान साथियों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं इस लोकगीत को।

0: तो किसान साथियों, चाहे जीवन में कुछ भी रहे, हमें भजन भक्ति में ज़रूर लीन रहना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बाजरे की। तो किसान साथियों, बाजरा हमारे देश की ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि बदलते मौसम और घटते जल स्तर के बीच बाजरे की खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। और किसान साथियों, इतना ही नहीं, बाजरा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में रेशा होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और कई सारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। श्री अन्न वो यही तो है कि उसमें मोटा अनाज और ये सब चीज़ें खाई जाएँ जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। लेकिन अच्छी पैदावार तभी मिलती है जब हम उन्नत किस्मों का चयन करें, सही समय पर बुवाई करें, संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें और फसल की समय समय पर उचित देखभाल भी करें। तो किसान साथियों, थोड़ी सी वैज्ञानिक जानकारी और सही तकनीक अपनाकर आप अपनी लागत कम कर सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। हमारे किसान साथी चाहते भी यही हैं कि भाई उनकी आय बढ़े, उनका घर परिवार अच्छे से चले। तो किसान साथियों, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष वार्ता। इस वार्ता में आपको बताया जाएगा कि बाजरे की उन्नत खेती कैसे करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें और किस प्रकार आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं बाजरे की उन्नत खेती विषय पर प्रेमपाल जादौन की ये वार्ता।
1: उत्तर प्रदेश में बाजरा मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ व फर्रुखाबाद जिले में उगाया जाता है। बाजरा की उन्नत फसल उगाने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, हम जलवायु पर बात करते हैं। जलवायु आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। बाजरा में सूखा सहन करने की शक्ति ज्वार की तुलना में अधिक होती है। बाजरे की फसल की जल मांग सबसे कम 250 से 300 मिलीमीटर या हम कह सकते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यदि हमारे क्षेत्र में वर्षा 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है तो बाजरा की खेती हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बाजरा की फसल जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाई जा सकती है। कपास की काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा व बलुई दोमट मृदा तथा कुछ स्थानों पर कंकरीली मृदा पर भी बाजरा की खेती को हम आसानी से कर सकते हैं। बाजरे की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी ठीक रहती है। अधिक उत्पादन के लिए बाजरा की उन्नतशील किस्मों का हम किस प्रकार चुनाव करें, तो बाजरा की फसल में परपरागण अधिकतर होता है, अतः जो भी नई उन्नतशील प्रजाति विकसित की जाती है वह अधिक समय तक शुद्ध नहीं रह पाती। नंबर एक,

पूसा मोती, यह किस्म आईसीएआर द्वारा निकाली गई पुरानी किस्म है। इससे 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है, 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। HB1 हाइब्रिड बाजरा 1, यह किस्म सन 1965 में PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड बाजरा की किस्म है। पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आगरा रीजन में प्राइवेट कंपनियों के जो सीड आ रहे हैं वो भी एक अग्रसर दिखाई दिए गए हैं। बायोसीड 8421, JK 2040, 9001, पायोनियर, महेको, MBN 151, हाइब्रिड HK 332, प्रो एग्रो 9402, JK BS 26 आदि। ये बीज आगरा क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक व अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। बीज दर किसानों को अधिक उत्पादन देने के लिए या अधिक उत्पादन करने के लिए सदैव प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। बीज को बोने से पहले हमें हमेशा बीज उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए जैसे सेरिसान, थीराम, एग्रोसेन, GN, कैप्टन आदि रसायनों के द्वारा हम बीज को उपचारित करते हैं। 1 कुंटल बीज में 250 ग्राम रसायन काफी रहता है। 4 से 5 KG पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए 2 KG पर हेक्टेयर हमें बीज की आवश्यकता होती है। पौधों की संख्या, अगर हम 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या देखें बाजरा की, वो 1,66,000 पर हेक्टेयर होते हैं। 10 जुलाई से 10 अगस्त तक हमें बाजरा की बुवाई कर देनी चाहिए। बीज की गहराई की जो हम बात कर रहे हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर हमें बोना चाहिए। अधिक गहराई पर बोने से अंकुरण कम होता है, अतः उतली बुवाई ही लाभदायक होती है। बुवाई की विधि, बाजरे की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए पंक्तियों में बुवाई करना लाभदायक माना जाता है। बुवाई हम मशीन द्वारा भी कर सकते हैं, छिड़कवा विधि द्वारा भी हम बुवाई पंक्तियों में कर सकते हैं। खाद देने का समय, हम कह सकते हैं कार्बनिक खाद हमें बुवाई करने से 1 महीने पूर्व देना लाभदायक होता है। हमें बाजरा की खेती के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई, बुवाई के समय मृदा में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। समय समय पर अगर वर्षा ना हो तो 1 से 2 सिंचाइयां हमें बीच में भी करनी पड़ सकती हैं, जिससे फसल वृद्धि में हमें कोई रुकावट ना हो। निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण, फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों का प्रकोप अधिक रहता है। खेत में 1-2 निराई गुड़ाई खुरपी की सहायता से या कल्टीवेटर विधि द्वारा हम कर देनी चाहिए। हमें खरपतवार नियंत्रण निम्न रसायनों के द्वारा भी करते हैं। एट्राजीन नामक रसायन की 0.5 KG मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़कने से अधिकतर खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बाजरे की खेती में बीमारियां आती हैं तो हमें समय समय पर उनका निदान भी कर देना चाहिए। हरित बाली रोग, यह फफूंद द्वारा पैदा होने वाला रोग है। इसके प्रभाव से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। यह बीज और मिट्टी दोनों के द्वारा फैलती है। अतः इस रोग के निदान के लिए हमें फसल पर 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 का घोल बनाकर 800 से 900 लीटर पानी में घोलकर छिड़क देना चाहिए। अगर लगातार बादल छाए रहे तो 10 दिन के बाद हमें दोबारा छिड़काव करें। कंडवा रोग, यह कवक द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग के आक्रमण से दानों के स्थान पर काला काला चूड़ भर जाता है। इस रोग का आक्रमण फूल आने के समय होता है। इसके निदान के लिए प्लांट वैक्स व व्हाइट वैक्स का छिड़काव करना भी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। अरगट रोग, कवक द्वारा फैलने वाली यह बाजरे की एक भयंकर बीमारी है। इसका प्रभाव बाजरे की संकर किस्मों पर अधिक पाया जाता है। इस बीमारी को चेपा या चिपका आदि नामों से भी जाना जाता है। बीमारी का प्रकोप बाजरे की बालियों में फूल आने के समय होता है। इसके निदान के लिए 0.2% जीराम या 0.05% डाइफोल्टान के घोल का छिड़काव बाली निकलते समय वह दूसरा छिड़काव 10 दिन के बाद करना चाहिए। बाजरे के खेत में कीट भी आते हैं तो उनका भी हमें रोकथाम कर देनी चाहिए समय समय पर। बाजरे की फसल में कीट पतंगों से अधिक क्षति पहुंचती है। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए कीटों की रोकथाम करना अति आवश्यक है। नंबर 1, जो दीमक, जिस खेत में दीमक लगने का भय हो उसमें बुवाई के समय 5% BHC या अथवा 5% एप्टाक्लोर 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर की दर से बुवाई के समय कूड़ों में डालना चाहिए। तने की मक्की, इनकी गिरारें अथवा सूढ़ियां पौधों की पड़वार को प्रारंभिक अवस्था में काट देती हैं, जिससे पौधा सूख जाता है। 1.2

0: लीटर थायोडान को 800 लीटर में घोल बनाकर प्रभावित फसल पर छिड़कना चाहिए। नंबर 3, टिड्डा एवं फड़का। टिड्डी रोग का प्रकोप आगरा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आता है, इस कीट की रोकथाम करना अत्यावश्यक है। 2 से 5वीं स्टेज पर ये नुकसान पहुंचाता है, इसका जो निदान है मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। मेलाथियन 5% पाउडर का 25 kg पर हेक्टेयर की दर से हमें इसका छिड़काव करें। जो हमें लास्ट में जो उपज प्राप्त होती है बाजरा की फसल की, इल्ड प्राप्त होती है, वो देसी प्रजातियों से 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है। हरा चारा जो 150 से 200 केजी पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। संकर जातियों से 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें दाना प्राप्त होता है और 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें हरा चारा प्राप्त होता है। धन्यवाद किसान भाइयों।
1: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रेम पाल जादौन की वार्ता, जिसका विषय था बाजरे की उन्नत खेती। किसान साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि मौसम कर रहा है आपका इंतजार।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: तो किसान साथियों, अब समय है मौसम की जानकारी का। खेती किसानी हो या फिर रोजमर्रा के काम, मौसम की सही जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। तो आइए जानते हैं आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों का आज का तापमान। तो किसान साथियों, आज आगरा का अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग इसी प्रकार रहने की संभावना है। किसान साथियों, अभी हाल ही में हुई बारिश को देखते हुए हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों का एक बार निरीक्षण जरूर कर लें। जहां खेतों में पानी भर गया हो ना, वहां से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि लंबे समय तक पानी भरा रहने से फसलों की जड़ों को नुकसान हो सकता है। और बारिश के बाद क्या होता है ना, खरपतवार तेज़ी से बढ़ जाते हैं, इसीलिए समय रहते उनकी सफाई अवश्य करें। साथ ही फसलों में कीट या फिर रोग के लक्षण दिखाई दें तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही उचित दवा का प्रयोग करें। किसान साथियों, जहां तक संभव हो खेत में पानी अधिक होने की स्थिति में खाद या फिर कीटनाशकों का छिड़काव तुरंत नहीं करना चाहिए। मिट्टी की नमी और मौसम सामान्य होने के बाद ही कृषि कार्य करने चाहिए। पशुपालक भाई बहन भी अपने पशुओं को सूखी और साफ जगह पर ही रखें, भीगा हुआ चारा ना खिलाएं और पानी पीने के लिए साफ ही उनको दें। यदि किसी पशु में बुखार, सुस्ती या फिर बीमारी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम अपनी फसलों और पशुधन दोनों को ही सुरक्षित रख सकते हैं। भाइयों, हमारे गाँव की मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहारें और लोकगीतों की मधुर तान, इनका अपना ही अलग आनंद होता है। सावन और बरसात का मौसम आते ही मन अपने आप गुनगुनाने लगता है और ऐसे में लोकगीतों की मिठास इस मौसम को और भी रंगीन बना देती है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही मनोरंजक लोकगीत जिसमें बरसात के मौसम के साथ ग्रामीण जीवन की सादगी और अपनापन बड़े ही सुंदर अंदाज में पिरोया है मिथिलेश जी ने अपनी आवाज़ में।

तो किसान साथियों, आज के कार्यक्रम ग्रामीलोक में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज दी गई जानकारियां, चर्चा, लोकगीत आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी भी होंगे। तो इसी के साथ हमें अपनी रेडियो सखी शोभना को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। राम राम।

ये था ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम ग्राम्यालोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो साथी खालिद तनवीर का नमस्कार। लीजिए दोस्तों, रोजाने की तरह आज फिर हाजिर है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम मजदूर मंडल। स्वागत है हमारे सभी साथियों का। कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आज का प्रश्न, जिसका उत्तर हमारे श्रोताओं को सोच कर रखना है, जिससे जब हम कार्यक्रम के अंत में उसका जवाब दें तो हमारे जागरूक श्रोता अपने सोचे हुए उत्तर को दिए गए जवाब से मिला सकें। तो भाई, आज का प्रश्न आज के दिवस से ही जुड़ा हुआ है और प्रश्न ये है कि हमारे देश राष्ट्र ध्वज के प्रारंभ रूप को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें दोस्तों, आज हमारे श्रोताओं को बताना है हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक रूप को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम, और इसका उत्तर हम अपने कार्यक्रम में ही देंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। चलिए अब कार्यक्रम को गति देते हैं और बात करते हैं सहकारिता की। तो सबसे पहले जान लेते हैं सहकारिता आखिर क्या है। दोस्तों, सहकारिता एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था या संगठन है जिसमें एक समान हित रखने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से एक साथ मिलकर यानी सहयोग करके किसी काम को करते हैं, और इसका मूल उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के लाभ के बजाय सभी सदस्यों के सामूहिक विकास और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करना होता है। असल में सहकारिता सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए की भावना पर काम करती है। सहकारिता में कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकता है। इसमें प्रबंध समिति का चुनाव सभी सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के कानूनी दायरे में रहकर किया जाता है। किसी भी काम को करने में इसके सभी सदस्य मिलकर पूंजी लगाते हैं और उसमें हुए लाभ का उपयोग सदस्यों के हित में ही किया जाता है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि सभी सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक शोषण से भी बचाया जा सके, संसाधनों का समान और उचित उपयोग किया जाए, और इसके अलावा किसी भी नुकसान या आर्थिक जोखिम को आपस में बांटा जाना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि सहकारिता के माध्यम से छोटे और सीमित संसाधनों वाले लोग भी बड़े स्तर पर व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं। इससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, इसके साथ साथ वे सभी आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं। विश्व स्तर की बात करें दोस्तों, तो सहकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही ब्रिटेन और फ्रांस में हो गई थी। इंग्लैंड के एक शहर में किसी सूती वस्त्र के कारखाने में काम करने वाले 28 बुनकरों ने आधुनिक सहकारिता का पहला व्यवसाय स्थापित किया था। इसके लिए उन्होंने निर्णय किया कि अपने सीमित साधनों का पूल बनाकर और एक साथ मिलकर काम करते हुए वे सस्ते दामों पर मूलभूत वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में बिक्री के लिए केवल 4 चीजें, आटा, दलिया, चीनी और मक्खन ही थी। पहले तो ये सहकारिता सप्ताह में केवल 2 रात के लिए ही खुलती थी, लेकिन 3 महीनों में ही व्यवसाय इतना बढ़ गया कि सप्ताह में ये 5 दिन के लिए खुलने लगी। हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले से चल रहा सहकारिता आंदोलन आज एक विराट रूप धारण कर चुका है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। इसके चलते देशवासी आर्थिक रूप से समृद्ध तो हुए ही हैं, साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी बहुत हद तक कम हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश भर में करीब 6 लाख से अधिक सहकारी समिति

कंपनियां सक्रिय हैं जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे यहाँ कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या भी बढ़ रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 का विषय आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समितियां घोषित कर दिया है, जो विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय, समावेश, एकजुटता को आगे बढ़ाने में सहकारी उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इस साल 4 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के सहकारी आंदोलन, सरकारें और सहयोगी एक साथ आए हैं। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास में सहकारिता के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के बीच सहयोग को मजबूत करना भी है। यूं तो दोस्तों यह दिवस 1923 से विश्व सहकारिता आंदोलन द्वारा मनाया जाता रहा, लेकिन 1995 से संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। सहकारिता यानी मिलजुल कर काम करना, और कार्यक्रम में जब मनोरंजन की बात हो तो इसी से जुड़ा हुआ एक गीत हम सुन लेते हैं और करते हैं मनोरंजन।

0: श्रोताओं, मनोवैज्ञानिक रोग यानी मानसिक बीमारियां, मस्तिष्क के रासायनिक अंशोतन असंतुलन या भावनात्मक आघात की वजह से होते हैं, जिनमें डिप्रेशन यानी अवसाद, एंजाइटी यानी चिंता और अनचाही असीमित सोच प्रमुख हैं। इनका उपचार थेरेपी, दवाओं और जीवन शैली में बदलाव का सही मिश्रण है, यानी उपचार और दवा के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी करते हैं और सुनते हैं आज की वार्ता। विषय है मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले रोग और उनका उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनुजा जैन।
1: स्वस्थ जीवन जीना एक कला है जो वास्तव में सभी को नहीं आती। अब प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य क्या है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णता स्वस्थ होना है। केवल शारीरिक बीमारी का ना होना ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ है, तभी उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। अतः जब भी कोई रोग होता है तब उसका उपचार करना आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक रोग का कोई ना कोई कारण होता है और हर रोग का उपचार केवल दवाई नहीं है। हमारे शरीर में अनेक अनेक प्रकार की शारीरिक और मनोरोग उत्पन्न होते हैं। इनके अनेक अनेक मनोवैज्ञानिक कारण पाए जाते हैं। आज सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में डिप्रेशन का, तनाव का, मूड स्विंग का, चिंता का देखा जाता है। इसका आनुवांशिक कारण भी है और जैविक कारण भी। इनमें प्रमुख रूप से हमारे दिमाग के सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे रसायन जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक कारणों से तनाव, चिंता, अवसाद आदि मनोविकारों से रोग उत्पन्न होते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ताप का प्रदूषण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रदूषण जैसे अनेकों कारण जिम्मेदार हैं। बचपन की चोट लगना, पारिवारिक संघर्ष होना, आर्थिक दबाव होना, सामाजिक अपेक्षाएं होना जैसे कारण भी मनोविकारों के लिए जिम्मेदार हैं। मन और शरीर अर्थात साइकोमेटिक अंतःक्रिया के कारण से सिर दर्द, पेट दर्द, लगातार दबावपूर्ण स्थिति इन रोगों को बढ़ाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करना जैसे शराब पीना, भांग, गांजा, तम्बाकू का सेवन करना इन रोगों की उत्पत्ति में और बढ़ोतरी में सहयोगी कारण है। मैं यहाँ पर आपसे एक और बात करना उचित मानती हूँ कि अभी पिछले वर्षों में पूरे विश्व ने कोविड जैसी महामारी का सामना किया। इस संबंध में चीन के ज़ेग्यांग विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने विश्व के लगभग 204 देशों पर अध्ययन किया। इसकी रिपोर्ट BMZ में प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के बहुत ही चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए। इस दौरान पूरे विश्व में पुरुष और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मानसिक विकारों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले चिंता और अवसाद के मामले 12-14% ज्यादा बढ़े हैं। किशोरों में ये मामले 15% तक बढ़े। ये सब विशेष आपदा के प्रभाव से ही हुआ। बालक का लालन पालन प्रेम वातावरण और सहानुभूति पूर्वक है। डांटना पीटना उचित नहीं है। किशोरावस्था के पूर्व उचित शिक्षा और परीक्षण रहे। संवेगात्मक अभिव्यक्ति का समुचित परीक्षण मिले। संतुलित व्यवहार की सीख दी जाए।

0: सम्मान को प्राथमिकता देकर सिखाया जाए, प्रेरित किया जाए, विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाया जाए, मनोरंजन की उचित सुविधा दी जाए। ये सब कारण किसी भी मनोविकार को रोकने में समर्थ हैं। आपको ये जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि अपच होना, कुपच होना, गैस बनना, सीने पर जलन होना, एसिडिटी जैसे रोग केवल हमारे आहार की गड़बड़ी से ही नहीं है, लेकिन तनाव का होना इन रोगों का बहुत बड़ा कारण है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हृदय रोग का कारण बनता है। यह हमारे खाने में ज्यादा मेद कारक या चर्बी वाले पदार्थ के सेवन से नहीं है, लेकिन बहुत अधिक आलसी और गतिहीन जीवन शैली का परिणाम है। मधुमेह या डायबिटीज आज बच्चे, बूढ़े सबको अपनी जद में लपेट रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि कोई रोग ये है ही नहीं। आपको लगता है कि ज्यादा मीठा खाने से, ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा से यह रोग होता है, किंतु ऐसा नहीं है। ये हमारे जिद्दी स्वभाव, स्वार्थी दृष्टिकोण, अच्छे सोच की कमी से होता है, जैसे कि हमारे पैनक्रियास को प्रभावित कर देते हैं, तब यह रोग के रूप में सामने आता है। आज उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, मतलब हाई या लो ब्लड प्रेशर जैसा रोग बहुतायश में लोगों में पाया जाता है। ये केवल अधिक नमक के सेवन से नहीं है, पर मुख्य रूप से भावनाओं के संवेग के, अनुभूति के, विचारों के कुप्रबंध या प्रतिबंध के कारण से है। श्वास रोग, टीवी रोग, अस्थमा, कुछ भी कहिए, ये हमारे फेफड़ों की क्रिया से संबंधित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रोग के होने में हमारे मन की दुखद भावनाएं शोक के कारण हमारी श्वासों को नियंत्रण रहित कर देते हैं, जिससे कुछ समय बाद फेफड़े प्रभावित होते हैं और श्वास रोग पैदा होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी, जो केवल L4 या L5 या सर्वाइकल विकार के कारण से नहीं है, अपितु ये भविष्य की चिंता होने से, भविष्य की असुरक्षा होने से, आशा भंग होने से, अचानक अधिक वजन उठाने से ये रोग पैदा होते हैं। अब मैं यहाँ पर ये चर्चा करना उचित मानती हूँ कि रोग और रोगों के कारण जानने के बाद ये भी जान लें कि इन रोगों का संभावित उपचार क्या है। हमारा जीवन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग को अच्छा रखना, स्वस्थ रखना अनिवार्य है। योग करना, आसन करना, ध्यान करना, प्रकृति के आनंद लेना, नदी के किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे जल के दृश्य देखना, उद्यान में घूमना, हंसना और दूसरों को हंसाना, सामाजिक जुड़ाव रखना, आपसी मेलजोल रखना, संवाद रखना, मित्रता रखना और निभाना, सामाजिक कौशल बढ़ाना आदि से व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना भी इन रोगों से निजात पाने में सहयोगी कारण है, जैसे संगीत सुनना, गायन करना, वीणा, बांसुरी आदि यंत्र बजाना, कला में अभिरुचि जगाना, दिमाग की कसरत करना, सृजनात्मक गतिविधि बढ़ाना जैसे लेखन, काव्य पाठ आदि, उचित आराम करना, पर्याप्त नींद लेना, ऐसी उपचार की विधियां अधिक उपयोगी हैं। ओमकार का उच्चारण करना, ऊंचा कंपन देना, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लालच, संदेह, क्रोध आदि के बजाय प्यार रखना, दया करना, उपकार करना, दान पुण्य करना, पूजन भक्ति करना, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना आदि प्रयोग भी लाभकारी हैं। मनोविकार हो गए हैं और अधिक विकसित होने लगे हैं, तब मनोविकृति के तुरंत उपचार के लिए कुशल मनोचिकित्सक के संपर्क करना सर्वथा उचित है। यह आपको रोग और उनकी प्रकृति के अनुरूप अनेक अनेक प्रकार की प्रचलित उचित निदान की विधियां या जांच, जैसे इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट आदि अपनाकर और विकार अनुसार थेरेपी जैसे CBT, साइकोलॉजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, प्ले थेरेपी, PMR थेरेपी आदि का प्रयोग कर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएंगे। इस स्थिति से भी अधिक ऊपर रोग की अवस्था हो गई है, तब मनोरोग चिकित्सक या साइकेट्री विभाग से संपर्क करना लाभदायक है। वहाँ एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोमेट्रिक आदि दवाओं से उपचार मिलेगा और जीवन का सच्चा और अच्छा आनंद ले सकेंगे।
1: श्रोता सुन रहे थे आज की वार्ता, विषय था मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले रोग और

0: उनका उपचार। वार्ताकार थी डॉक्टर अनुजा जैन। और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और दोस्तों, ज्ञान सागर की तरफ पढ़ने से पहले हम आपको आज के कार्यक्रम में पूछे गए प्रश्न का उत्तर का जवाब दिए देते हैं, जिससे आपको ज्ञान सागर सुनने में मजा भी आएगा, क्योंकि आज का जो सवाल है वो इस महान हस्ती से जुड़ा हुआ है जिसकी आज हम ज्ञान सागर के अंदर बात करेंगे। तो आज हमारे श्रोताओं को बताना था, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक रूप को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम। और दोस्तों, इसका उत्तर है पिंगले वेंकैया। जी हाँ साथियों, और आज के ज्ञान सागर में बात करते हैं इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। श्रोताओं, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पिंगले वेंकैया को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। वे एक समर्पित देशभक्त, भाषाविद, कृषक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके द्वारा डिजाइन किया गया ध्वज कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ अपना लिया गया था। स्वतंत्र भारत का आधिकारिक प्रतीक बन गया। झंडा वेंकैया के नाम से प्रसिद्ध उनका योगदान ध्वज से कहीं अधिक था। वेंकैया भारत की स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उन्होंने कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के गौरवशाली ध्वज तिरंगे में वेंकैया की विरासत आज भी कायम है। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्म लेने वाले वेंकैया के जीवन में राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के बारे में उनकी सोच कैसे बनी, इसका एक छोटा सा संस्मरण ये है कि जब 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती होकर सन 1902 के द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में तैनात हुए, जहां उनकी मुलाकात गांधी जी से पहली बार हुई। युद्ध के दौरान सभी सैनिकों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक को सलामी देनी पड़ी। तब वेंकैया को सभी भारतीयों के लिए एक ध्वज की आवश्यकता का एहसास हुआ और 1921 में उन्होंने इसको पूरी तरह डिजाइन कर दिया, जिसमें ऊपर लाल पट्टी और नीचे हरी पट्टी रखी। बाद में गांधी जी की सलाह पर वेंकैया ने लाल और हरी पट्टी के बीच सफेद पट्टी को बढ़ा दिया, जबकि 1931 में गांधी जी ने लाल पट्टी का रंग नारंगी कर दिया। बस भारत की स्वतंत्रता से 20 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान ध्वज को इसी वर्तमान स्वरूप में अपना लिया गया। और कार्यक्रम में समय हो चला है कुछ सेहत टिप्स के बारे में बात करने का। तो साथियों, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया और पेट की बीमारियों से बचें। उबला हुआ या अच्छी तरह फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, जिससे पीलिया और टाइफाइड से बचा जा सके। डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए घर के आसपास पानी न जमा होने दें। सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें और फुल बाजू के कपड़े पहनें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अपने खाने में विटामिन सी जैसे नींबू, आंवला और तुलसी, अदरक, काली मिर्च वाली हर्बल चाय यानी काढ़ा को जरूर शामिल करें। बारिश में भीगने के बाद जल्दी नहा लें और अपने पैर व हाथों को साफ पानी से, साबुन से धोएं, ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचा जा सके। और अब बातें कुछ नई खोजों की। साथियों, जून 2026 में वैज्ञानिकों ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्राजील के तट के आसपास 31 नई समुद्री प्रजातियों की खोज की है, जिनमें कई नए क्रस्टेशियन शामिल हैं। तो वहीं हमारे रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और कार्यक्रम में अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं देश प्रेम वाला यह गीत।

अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के

0: तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAP plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by

0: वार्ताकार हैं डॉक्टर राजीव जैन।
1: हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा हीट प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई धरती की सतह जमीन से टकराती हैं और वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार के प्राकृतिक आवरण लेयर बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार से पृथ्वी के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। गौरतलब है, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी अधिक सघन या मोटा होता जाता है और ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां हैं। हम स्वयं ही अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास को समाप्त करने पर तुले हैं। मनुष्य जनित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। औद्योगीकरण, अधिक मात्रा में वाहनों का प्रयोग, परमाणु ऊर्जा प्रक्रमों से निकलने वाला काला धुआं इसका मुख्य कारण है। प्रदूषण उत्पत्ति मानव के हर कर्म से, ये ऊंची इमारतें, ये मोटरें, ये कारें, इसी प्रगति का उपहार प्रदूषण, वर्तमान कलयुग का आधार प्रदूषण। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक होते हैं और वे प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा नियंत्रित करते हैं। इन पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटान भी ग्लोबल वार्मिंग की दूसरी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। नंबर पहला, वातावरण के तापमान में वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में धरती के औसतन तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि हम जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में और अधिक वृद्धि होगी। द्वितीय, समुद्री सतह में बढ़ोतरी। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियरों पर जमा बर्फ पिघलेगी। कई स्थानों पर यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। ग्लेशियरों की बर्फ के पिघलने से समुद्रों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे साल दर साल उनकी सतह में वृद्धि होती जाएगी। समुद्रों की सतह बढ़ने से प्राकृतिक तटों का कटाव शुरू हो जाएगा, जिससे धरती का एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। इस प्रकार तटीय कोस्टल इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। मानव स्वास्थ्य पर असर। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जब हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब ना हो। पशु पक्षी व वनस्पतियों पर असर। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी और वनस्पतियां धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। शहरों पर असर। इसमें कोई शक नहीं कि गर्मी बढ़ने से ठंड बगाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऊर्जा की खपत में कमी होगी, लेकिन इसकी पूर्ति एयर कंडीशन में हो जाएगी। घरों को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करना होगा। बिजली का उपयोग बढ़ेगा तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ही होगा। ओजोन परत का क्षय। पृथ्वी के

0: वायुमंडल में ओजोन गैस की एक प्राकृतिक सतह होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अंतरिक्ष किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से इस ओजोन परत का क्षय प्रारंभ हो चुका है और इसमें कई जगह छेद हो गए हैं, जिससे खतरनाक अंतरिक्ष किरणें कॉस्मिक रेज पृथ्वी पर आ रही हैं, जिनका दुष्प्रभाव कैंसर नामक भयावह बीमारी की बढ़ोतरी के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें? ग्लोबल वार्मिंग के प्रति दुनिया में चिंता बढ़ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली यूएनओ की संस्था आईपीसीसी अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणवादी अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को दिया गया है। वायु प्रदूषण कम करने हेतु विकसित व विकासशील देशों में पेरिस समझौता हुआ है, जिसके अनुसार भविष्य में सभी देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन की दर को क्रमशः घटाने पर संधि की गई है। हमें भी व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से कतिपय उपाय करने चाहिए, जिसमें प्रमुखता से पेट्रोल डीजल और बिजली की खपत मितव्ययता से करनी होगी, साथ ही जंगलों की कटाई रोकनी होगी व अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। टेक्निकली ऐसे वाहन बनाने होंगे जो कम धुआं उत्सर्जित करें व प्रायः प्रयोग होने वाले एयर कंडीशन व रेफ्रिजरेटर कम से कम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करें। अंततः यदि चाहते हो देश की सुरक्षा तो प्रकृति को संरक्षित करना होगा। यदि नहीं करते प्रदूषण से सुरक्षा तो कैसे हो पाएगी आत्मरक्षा?
1: ग्लोबल वार्मिंग के आसन्न खतरे। अभी आप इस विषय पर सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर राजीव जैन। कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एकदम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की तीन दिवसीय

0: परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न, 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पर लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
0: अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल, एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड

0: इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केन्द्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ

0: प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में हम अपने देश से जुड़े, अपने युवाओं से जुड़े, देश की समस्याओं से जुड़े या देश के विकास से जुड़े आपसे बातें करते हैं। आज विषय कुछ ऐसा है, जी हां, हम आपको बता दें कि हमारे जो युवा हैं वो हमारे देश की असली ताकत है। हमारे देश के युवा अगर सही राह पर हैं तो देश भी हमारा सही राह पर है। तो चलिए इसी बारे में हम आज आपसे कुछ बातें करेंगे। श्रोताओं, कहा जाता है कि तकनीक एक वरदान है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। श्रोताओं, आज का युग तो डिजिटल युग है। आज हम सभी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको हम बना चुके हैं, और होना भी चाहिए। भाई, हम पूरी दुनिया की खबरें हमारे पास पलक झपकते ही आ जाती हैं। किसी भी कोने की जानकारी प्राप्त करना, मित्रों और परिवार से जुड़े रहना, अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचाना पहले कभी इतना आसान नहीं होता था। साथियों, सोशल मीडिया ने संचार के नए द्वार खोले हैं। इसके बढ़ते प्रभाव ने युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। जी हां, यदि इसका उपयोग सावधानी और विवेक से न किया जाए तो ये युवाओं के समय, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य और यहां तक कि भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनमें नई सोच, नए विचार, उत्साह और कुछ कर गुजरने का एक जज्बा होता है। पर साथियों, आज कहीं हम ये भी देखते हैं कि अनेक युवा सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने वास्तविक जीवन, परिवार, शिक्षा और यहां तक कि सामाजिक दायित्वों से भी दूर होते जा रहे हैं। घंटों तक मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताना, बिना सोचे समझे हर जानकारी पर विश्वास करना, लाइक और फॉलोअर्स की दौड़ में शामिल होना और दूसरों से अपनी तुलना करना, श्रोताओं, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो कि एक युवा के आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खतरा समय की बर्बादी है। कई बार युवा केवल कुछ मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन देखते ही देखते उन्हें पता भी नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए। इसका सीधा असर स्वास्थ्य, पढ़ाई, उत्पादकता पर पड़ता है। इसके अलावा एक दूसरी बात यह भी है कि झूठी खबर, अफवाहें और भ्रामक जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैलती है। साथियों, यदि बिना सत्यापन के इन सभी चीजों पर विश्वास किया जाए या इन्हें आगे साझा किया जाए तो यकीन मानिए, समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। श्रोताओं, इसी विषय पर आपसे बहुत सारी

श्रोताओं, हम आपसे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का जो असर आजकल युवाओं पर पड़ रहा है इस पर। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक भी आज हमारे युवाओं को भ्रमित कर रही है। लोग अक्सर अपने जीवन का केवल अच्छा पक्ष ही साझा करते हैं, ये जरूरी नहीं है। इसे देखकर कई युवा स्वयं को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। इससे तनाव, हीन भावना और अवसाद जैसी समस्याएं उनमें जन्म ले सकती हैं। साथियों, यहां यह समझना आवश्यक है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर तस्वीर या हर कहानी वास्तविक जीवन का पूरा सच नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम सभी को, युवाओं को, सबसे पहले समय प्रबंधन सीखना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित समय के लिए करें। पढ़ाई, खेल, परिवार और आत्मविकास को प्राथमिकता देना चाहिए। मोबाइल का उपयोग साथियों उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, न कि केवल समय बिताने का साधन। और इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात श्रोताओं ये है कि क्या सही है और क्या गलत, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। सही और गलत में अंतर समझना आना चाहिए। किसी भी समाचार या वीडियो पर तुरंत विश्वास न करें। विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि करें और बिना जांच किए कोई भी जानकारी आगे साझा न करें। वैसे भी श्रोताओं, एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने का यही पहला कदम है। साथियों, सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन तक सीमित आज नहीं रह गया है। इसका उपयोग नई भाषाएं सीखने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने, कौशल विकसित करने, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। जब तकनीक का उपयोग सीखने और समाज के हित में किया जाता है ना, तब वही सोशल मीडिया सफलता का माध्यम बन जाती है।

श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखते हैं और रखना भी आवश्यक है। युवाओं को भी अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय योग, व्यायाम, खेल, किताबें पढ़ना, परिवार के साथ दिन बिताने की आदत को बढ़ाना चाहिए। साथियों, वास्तविक मित्रता, संवाद और सामाजिक संबंध किसी भी आभासी दुनिया से बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। इसके अलावा श्रोताओं, पूरे समाज की एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। परिवार की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने युवा बच्चे पर, हम तो ये कहेंगे कि प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है, फिर भी इस डिजिटल युग के बारे में बताना चाहिए। इस डिजिटल दुनिया की लाभ और हानियों के बारे में जागरूक करना चाहिए। विश्वास, संवाद और सही मार्गदर्शन ही युवाओं को सही दिशा दे सकता है। साथियों, आज आवश्यकता सोशल मीडिया से दूर भागने की नहीं, बल्कि उसका संतुलित, सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने की है। श्रोताओं, तकनीक मनुष्य की सेवक बने, स्वामी नहीं, यही इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी सीख है। श्रोताओं, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है और हम सभी ये भी जानते हैं कि ये हमें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है, लेकिन कम जानकारी या जानकारी न होने की दिशा में ये गलत दिशा में भी हमें ले जा सकता है। निर्णय हमारे हाथ में है। यदि युवा अनुशासन, आत्म अनुशासन, विवेक और सकारात्मक सोच के साथ इसका उपयोग करे तो वे न अपना केवल उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथियों, मोबाइल को अपनी आदत नहीं बल्कि अपनी आवश्यकता बनाइए, क्योंकि समय वही सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन, कार्यक्रम भजन संध्या में।

0: श्रोताओं, फिल्म चार धाम का भजन गा रहे थे ए हरिहरन और साथी, बोलते उदय शंकर पानी के, संगीत था सुरेंद्र कोहली का। आइए अब सुनते हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाजों में फिल्म ईश्वर से ये भक्ति गीत। शब्दकार हैं अनजान, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: तार सप्तक, मंद्र सप्तक,

श्रोतो, ये आवाजें थी आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की। फिल्म थी गीत गाता चल, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आइए अब सुनते हैं फिल्म लल्लू राम में अनुराधा पौडवाल और शिव कुमार को, गीत संगीत एक बार फिर रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, मुकेश के गाए फिल्म मनचली के इस भजन के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत में कुछ और गीत।

श्रोताओ, पाकिजा फिल्म के लिए यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीत के बोल कमाल अमरोही के थे और संगीत था गुलाम मोहम्मद का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म काजल से ये गीत। गीतकार साहिर और संगीतकार हैं।

श्रोतो, आशा भोसले के गाए फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया, हम देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद ने सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्र

0: परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना Tier 2 और Tier 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर

0: रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate, and in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest

0: सूर्यवंशी बैन अलावा क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असम्बली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मस्कूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिनभर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बोहरान पैदा हो गया था।

0: और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है। कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
2: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
1: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
2: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह।

0: रहता है।
1: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
3: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
3: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
1: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
3: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मल्लिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।

मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता

0: एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं, और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं। उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थीं जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है, और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं, पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है, इसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें, तो रामलीला कहानी है। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है

0: वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद

0: का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर। वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
1: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
2: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर, वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं। जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर से बहुत अधिक प्रभावित थे। उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी

0: स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथीपुरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाट जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमाशंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Yaman in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Raag Hameer. Pandit Arnob Chattopadhyay concludes his Khayal recital with Raag Vachaspati. The composition of the Raag is set in Madhya Lay Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: काल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति in the Khayal recital by Pandit Arnab Chattopadhyay. He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koyal Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की

0: विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr.